निछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जन्म दे दिया। एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा आके, काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी क्या है? बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो। देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार उसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा न बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है,
बार बार वहां रीथा लगा के मलना धोना पीट पीट के उस दोष को निकालना, ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हमको शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए, आप कुम्हार की मिट्टी हैं। अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंथता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंथ के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भगवती का रस बह जाएगा, और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए, धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से, जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव। शास्त्र को तुम क्या समझोगे, तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे, नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है, होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो, तो कारंग बरस रहा है काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम की होली तो फिर नयो नेह नवरंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भेजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, फिर आप दूसरा रंग ना चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए,

महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता। हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे, जो कपटी है छली है दोषों से युक्त है उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे बोले, मन मैल मिटावे उज्जवल कर दे धोए, जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे। गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन। वचन आधीन सदा रहें रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है, वचन आधीन सदा रहें। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा है। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। और हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं। ये मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहाँ की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जू हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माणुश्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्त कुर्वन्त मा, गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुञ्चन्तु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है, ऐसे पूरी रात रात पानी।

जो किसान जन है वो जानते हैं, पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि दो महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक एक वर्ष इसमें भोजन पाएगा। एक वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म्य हैं, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या? सब भोग जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, ऐ मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है प्रभु, जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, शांत अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, ताप जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है, अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मरण बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है, कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में विश्व में कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो, क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। तज तीरथ हरिराधिका

प्रभु, यहां वृंदावन में एक कदम चले तीर्थराज प्रयाग के वास और आह्वान का फल आपको मिल रहा है, जैसे अपार महिमा। देखो जैसे दूध पीने से सद्या शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है, हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे बिलग हो रहा है, इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं जब वो कुंभ पड़ता है। प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है, जय ब्रज केल।

वृंदावन, आप गृहस्थ हैं बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम, दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन, ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान श्री जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं, कैसे समझाएं। बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे, हमारी ऐसी कुछ दशा है। शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है, गिर जाएगा तू, ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा, जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है, दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर, तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनी आप, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है, भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या, है तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है। ये हमारी प्यारी जी से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा, नहीं आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है,
अपने प्यारे के द्वारा

0: प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने, सब कोई जानता है लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे ना मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावला है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु से दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए, हाँ लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे, कह दो। अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू, उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेवी से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू, समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है, देख लो अंदर से देख लो। चातक को पन गहरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो, बोले नहीं ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया, हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा,
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: कभी कभी हम हाँ कहना नहीं चाहते, फिर भी सिर्फ डर से मान जाते हैं कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आरजे पलक और शो लेकर आ गई हूँ नया नजरिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हैबिट की जो धीरे धीरे हमारी खुशी छीन लेती है, अप्रूवल ट्रैप। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी एंड बीके प्रिया जी, वेलकम मैम।
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
0: ज्योति जी, अगर कोई सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए हर बात पर हाँ कहने लगे तो क्या यहीं से अप्रूवल की आदत शुरू होती है?
2: कह सकते हैं, अगर हमें वो बार बार इस चीज की आदत होती जा रही है, बार बार किसी से अप्रूवल लेना ही है, तो वो हमारी आदत तो बन ही चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हाँ कर रहे हैं तो आप रॉन्ग हैं। अगर आपको कहीं पर भी, जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज में, तो हमारे जो बड़े हैं वो हमें एक चीज सिखाते हैं कि हर एक बात में आप हाँ जी करिए, पहला शब्द आपको हाँ ही करना है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हाँ ठीक है आप ऐसा कह रहे हैं हम कर देंगे, लेकिन मेरे पास ये टास्क भी पहले से है, अगर आप कहें तो, अगर आपको लगता है कि ये टास्क हम बाद में करें या आपका पहले करें, तो आप मुझे वो चीज बताएं, अगर आप रुक सकते हैं तो। इससे क्या है, हमने ना भी नहीं किया और साथ साथ जो है हमने अपनी बात भी रख दी है। तो हाजी का भी जो आपका रोल है, जो यस करने का, वो भी कहीं हमने खराब नहीं किया है। और दूसरा जो है, कहीं ना कहीं जो हमारी नेगेटिव बातें आती हैं, एकदम से हम किसी को अगर ना करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको बुरा लग जाता है। अगर हम भी किसी से कोई काम कह रहे हैं और उसने तुरंत ना कह दिया तो हमें लगता है कि इसने तो एकदम से ही ना कह दिया है, तो किसी न किसी को हर्ट होता है और हमें भी कहीं ना कहीं वो बुरा लगता है और हम भी किसी को

0: दुख नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमेशा ये नहीं सोचे कि हमेशा सामने वाला मुझे जो कह रहा है हम कर सकते, क्योंकि हर एक की एक अपनी लिमिटेशंस है, हर एक व्यक्ति की अपने अपने काम करने की क्षमता है, और अगर हम उससे बियॉन्ड जा करके सिर्फ लोगों को राजी करने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सामने वाले को हम ना चाहते भी फिर हर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी तो उतनी है, और वो हर्ट होगा तो हम भी कहीं ना कहीं हर्ट होंगे। तो इसीलिए आपका जो भी शेड्यूल है आप उसको हाजी करके अपने शेड्यूल को जरूर बताएं कि हाँ ये मेरा शेड्यूल है, अगर आप आगे पीछे कर सकते तो आपके काम के लिए हम नो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले से जो चीज फिक्स है तो आप देखेंगे कि सामने वाला कभी भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि हम रोज की लाइफ में ऐसा करते हैं कि अगर हमने रिक्वेस्ट की है कि हाँ ओके हम करेंगे, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पहले से ये काम है तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उससे उनको भी लगता है कि हाँ इनके पास जेन्युइनली काम है और ये करना तो चाहते हैं लेकिन ये खुद भी बिजी है, तो इसीलिए वो फिर हमारी आदत भी नहीं बनेगी, जो अप्रूवल वाली आदत बनती जा रही है हमारी वो आदत भी कम हो जाएगी, और साथ साथ हमें ना कहने की आदत भी नहीं बनेगी। यस हम करेंगे लेकिन बैलेंस रख।
1: जी बिल्कुल, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: Luxury is not about what you wear, it's about how you carry yourself. Ilahe by Ritu invites you to Jashn, a premium fashion and lifestyle exhibition where elegance meets creativity and style meets sophistication.
1: यहाँ आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिजाइनर एंसेंबल, स्टेटमेंट ज्वेलरी, लग्जूरियस एसेसरीज और हैंड पिक्ड लाइफस्टाइल ब्रांड्स, ऑल क्यूरेटेड फॉर दोज हु अप्रिशिएट द फाइनर थिंग्स इन लाइफ. सो मार्क योर कैलेंडर्स, 6 अगस्त, 11 AM to 8 PM, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद.
0: कम एक्सप्लोर अ वर्ल्ड ऑफ फैशन, एलिगेंस एंड लग्जरी.
1: जश्न इलाही बाय रितु. सी यू देयर.

0: कई लोग अपनी खुशी से पहले हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रहते हैं और धीरे धीरे खुद को ही भूल जाते हैं। प्रिया जी, क्या हर किसी को खुश रखने की कोशिश हमें धीरे धीरे खुद से दूर कर देती है?
1: बिल्कुल, क्योंकि जब मैं किसी को खुश नहीं कर पाती हूँ, मैंने कोशिश की पर वो नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस दुनिया में हर किसी को खुश कर ही नहीं सकती। अब हर किसी को खुश करने की बात नहीं आती, लेकिन जो मेरे सर्कल में है उनको भी मैं सभी को खुश पूरी तरह से 100% नहीं कर सकती। और जब मैं नहीं करती तब मैं और स्ट्रेस में जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मुझे सबको खुश करना है, तो यहाँ मेरी एक्सपेक्टेशंस को भी चोट लगा और दूसरा मैंने उसे खुश नहीं किया है तो वो भी मेरे से अपसेट है, तो यहाँ मुझे डबल चोट लग रही है। और जब डबल चोट आ रही है तो फिर मैं उसको हीलिंग नहीं करूँगी तो अपने आप से मैं वाकई में दूर जा रही हूँ, क्योंकि अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने जो भी मेरा मेंटल लेवल है, मैं उस चीज़ के बारे में डीपली सोच ही नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले अपने आप को हमें देखना है कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। मैंने अपनी कोशिश की लेकिन सामने वाले की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा है और वहां मेरा लेवल ही नहीं है। अब वो व्यक्ति जो सामने है वो सीधा एरोप्लेन में बैठना चाहता है पर मैं ट्रेन की ही टिकट प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो यहाँ पर मुझे अपने आप को बैक करने की जरूरत है। और अगर मैं नहीं करती हूँ तो अपने को चोट दे रही हूँ और अपने आप को चोट देना माना मैं अपने आप से दूर हो रही हूँ, क्योंकि जो अपने आप को चोट दे रहा है वो अपने आप से दूर है। और जो अपने आप को पहचानता है उसे पता है मेरी लेवल क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरी चॉइसेस क्या है, मैं किस चीज में खुश हूं, तो वो अपने आप को हील करेगा। और दूसरा एक और बड़ी बात है कि अगर मैं खुश हूं तो ही दूसरे को खुश कर पाऊंगा। अगर मैं चोट में हूँ, उदास हूँ, परेशान हूँ, बिगड़ी हालत में हूँ इंटरनली, तो मैं सामने वाले को ज़्यादा देर खुश कर ही नहीं सकती, सबको खुश कर ही नहीं सकती। इसलिए नीड है सबसे पहले अपने आप को हील करना, खुश करना, अपने आप को पहचानना।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी।

0: से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: हो गया

0: में खाना तो अच्छा होगा ना।
1: खाना छड़, पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार।
3: पुलिस,
2: पुलिस, दिस इज अनरियल मैन, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार।
4: 89.6 रेडियो महारानी पर 1947 वापस आ रहा है। कब, कहां, कैसे, जल्द पता लगेगा।

0: कभी सिर्फ एक नो बोलने पर भी गिल्ट फील होने लगता है, जैसे हमने कुछ गलत कर दिया हो। ज्योति जी, अगर नो बोलते ही गिल्ट फील हो तो उससे बाहर कैसे निकला जाए?
1: डिपेंड करता है कि आपको गिल्ट किस ना कहने पे हो रहा है। ये भी बहुत जरूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा मूड डिस्टर्ब था और हमने उस डिस्टर्ब मूड में ही किसी ऐसे कार्य के लिए ना कह दिया और फिर हमें गिल्ट फील हो रहा है। तो उसके लिए तो सबसे जरूरी है कि हम उस बात को जाकर क्लियर कर लें और अपने मन की गिल्ट जो है उसको ख़त्म कर लें। जिस व्यक्ति को हमने ना कहा है उसको अपने मन की सिचुएशन को समझा दे तो वो गिल्ट ख़त्म हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने ना कहा है लेकिन वो जेन्युइन ही कारण था, लेकिन फिर भी हमें गिल्ट फील हो रहा है कि हाँ हमने ना क्यों कहा है। तो उसमें हमें अपने आप को एक थॉट देना है कि हमने किसी को दुख ना मिले इसलिए ना कहा है। तो मुझे इसमें, अगर आप गिल्ट में रहेंगे तो आप ना तो अपना वो कार्य कर पाएंगे ना दूसरे को दोबारा वो खुशी दे पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को ये थॉट देना है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, जो भी है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी थी। तो जितना हम अपने आप को इस चीज का, ये क्योंकि इन सब के लिए, जो भी आपने गिल्ट की बात की या जो भी हमने ये दो जो बातें बताई भी हैं कि गिल्ट को कैसे हम ठीक करें, इनमें सबसे जरूरी चीज है कि आपको पहले अपने साथ टाइम देना पड़ेगा। अगर आप अपने साथ टाइम देते हैं कि मुझे इस गिल्ट को खत्म करना है, तो वहीं से ही आपकी वो शुरुआत हील होने की शुरू हो जाती है।

0: सबसे जरूरी है कि हम गिल्ट भी फील कर रहे हैं लेकिन हम अपने को टाइम भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर ऐसे ऑप्शन में तो हम ठीक अपने आप को नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे अपने आप को ठीक करना है तो मुझे अपने आप को थोड़ा टाइम देना है कि मैंने क्यों ना की है, उसके पीछे रीजन क्या था, क्या सामने वाले को दिल दुखाना। अगर शायद नहीं, शायद मैं तो नहीं समझती कोई भी दिल दुखाने के लिए ना कहेगा, कोई रीजन था इसलिए ही ना किया, तो फिर मुझे गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। और अगर मैंने कोई अपने मूड ऑफ के कारण किसी को ना कहा है तो उसके लिए फिर मूड ऑफ करके बैठने से और गिल्ट करने से नहीं होगा, उसको जाके क्लियरिफिकेशन करना है। तो ये चीजें पहले अपने आप को टाइम दें, उस रीजन को ढूंढे कि मुझे गिल्ट क्यों हो रहा है और मैंने ना क्यों कही है, तो हमें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा।
1: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

हेलो हेलो एंटरटेनमेंट के पागल लोग, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, जहां हम स्क्रीन के इस पार की दुनिया को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फनी और फुल मसालेदार अंदाज में डिकोड करते हैं। तो भाई, जिस शो ने जेल के अंदर से इतना ड्रामा बाहर भेजा कि घर बैठे लोगों को भी लगा भाई हमारी लाइफ तो काफी पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉकअप की। तो अब लॉकअप पहुंच चुका है अपने ग्रैंड फिनाले के दरवाजे तक, और जैसे जैसे ट्रॉफी करीब आ रही है, कंटेस्टेंट के असली गेम प्लान भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी शो का रूल सिंपल है। शुरुआत में सब बोलते हैं मैं ना यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, और फाइनली आते आते वही दोस्ती बदल जाती है, सॉरी ब्रो, ट्रॉफी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं आती। इस शो में फाइट्स भी मिले, इमोशंस भी मिले, सीक्रेट्स भी मिले, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहाँ ऑडियंस ने रिमोट नहीं बल्कि अपना पेशेंस पकड़ रखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर? किसके फैंस करेंगे सबसे ज्यादा नॉइस? किसका गेम पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग? और कौन निकलेगा असली जेल का बाजीगर? क्योंकि रियलिटी शो में आखिरी वीक में ना

0: खुद का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन कई लोग इसे सेल्फिशनेस समझ लेते हैं। प्रिया जी, खुद को प्रायोरिटी देना और सेल्फिश होना, इन दोनों में फर्क कैसे समझे?
1: ये सिंपल सा साफ वो डिफरेंस है जिसमें ईगो वर्सेस सेल्फ एस्टीम।
0: जी,
1: अगर सेल्फ एस्टीम है तो मैं प्रायोरिटी दूंगी, और अगर ईगो है तो मैं सेल्फिश हो जाऊंगी। तो अगर मुझे इस चीज को क्लियर करना आता है कि कहाँ पे मेरा सेल्फ एस्टीम नहीं टूटना चाहिए, तो वहां मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अपनी प्रायोरिटी देनी है कि अपना जो रिस्पेक्ट है वो मुझे मेंटेन रखनी है, सामने वाले के नीचे मुझे इतना नहीं दबना कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी इमेज मेरी ही आंखों में गड़बड़ होने लगे या मुझे मेरे ऊपर शर्म आने लगे। मुझे कुछ ऐसा नहीं करना जो मुझे गिल्ट फील होने लगे। तो यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, यानी प्रायोरिटी की बात आती है। और जहाँ मुझे लगता है कि सिर्फ मैं अपने आप को ही हाईलाइट करने पे लगी हूँ, अगर फोटो भी खींच रही है तो मैं फ्रंट में खड़े होना चाहती हूँ, चाहे मेरी हाइट सबसे बड़ी है, क्योंकि हाइट बड़ों को तो पीछे होना चाहिए और हाइट कम को आगे। तो जिस भी लेवल पे अगर मैं बस सबको पीछे करके आगे आ रही हूँ, किसी भी वे में, अगर किसी के लाइक्स ज्यादा आ गए हैं तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया है कि मेरे पे लाइक्स ज्यादा आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं अगर कहें कि मैं अपने आप को ईगोइस्टिक लेवल पर लेकर जा रही हूँ, वहां मैं सेल्फ वर्थ नहीं देख रही हूँ, यहाँ मैं अपना सेल्फिशनेस मेरी आ रही है। कुछ भी आया है वो मुझे पहले मिले, मैं भले नहीं आई हूं तो क्या छोटों को पहले नहीं मिल सकता? किसी भी वे में आगे आ जाना, तो मुझे ये देखना है आगे तो रहना है, लेकिन इस वे में रहना है जो मैं सबको प्यार से आगे ले चलूं, सबको साथ आगे ले चलूं, साथ में आगे चलना, वो विन विन सिचुएशन है कि आप भी जीते और मैं भी जीती। लेकिन जहां मैं सिर्फ अपने को आगे रखूंगी तो एक दिन सब मुझे पीछे रख देंगे, तो वो लॉस लॉस सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को हमेशा क्लैरिटी में रखें कि कहां मेरी सेल्फ एस्टीम और ईगो ये क्लैश ना कर जाए।
0: इतनी मीनिंगफुल बातें शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच मैम।
1: ओम शांति। थैंक यू।
0: दोस्तों, याद रखिए, हर किसी को खुश रखना अपनी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन खुद को खुश रखना जरूर आपकी जिम्मेदारी है। जब आप खुद इमोशनली स्ट्रांग होंगे तभी दूसरों का भी बेहतर साथ दे पाएंगे। मैं हूँ आज पलक, आपसे इजाजत लेती हूँ। फिर मिलेंगे नया नजरिया के अगले एपिसोड में, एक नए टॉपिक और एक नए नजरिए के साथ। बाय बाय, टेक केयर।

0: 89.6 FM कुछ हटके
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

मॉर्निंग फरीदाबाद, पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप सब। आई नो अच्छे ही होंगे और आपकी बेहतर हलचल को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने ही तो मैं यहाँ आती हूँ ना। तो भाई देखिए, शो है अंजलि ऑन एयर और अब आ गई हूँ आपके साथ बातें करने के लिए। तो पूरा 4 घंटे आपके साथ रहने वाली हूँ। बहुत कुछ है आज आपके साथ शेयर करने के लिए, तो भाई फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो हम लोग थर्सडे में आज बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग वाला दिन होता है ये, क्योंकि यहाँ ना वीकेंड का इंतजार कर रहे होते हैं, वही लेजी लेजी मूड आ गया होता है। और वैसे अगर आपने नोटिस किया हो ना, तो थर्सडे तक आते आते अलार्म से हमारी दोस्ती भी हो जाती है, चाय से मोहब्बत हो जाती है और वीकेंड का प्लान बन जाता है। वैसे आज आपके साथ 4 घंटे होने वाली हूँ, फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। मौसम का हाल, फरीदाबाद की लोकल अपडेट से लेकर बॉलीवुड बस, साथ ही मिलेगा आपको सोशल स्यापा और भाई साइबर शील्ड तो मैं आपकी हूँ ही। तो बस देरी किस बात की, एंजॉय कीजिए। प्यासो ट्रैक जो है खास आपके लिए, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक केजी। देखिए वेलकम भी मैंने आपका कर दिया और फिर से लौट आई हूँ। बातें बहुत सारी करूँगी लेकिन पहले काम की बातें कर लेता है। और काम की बातें ये है कि सबसे पहले जान लेते हैं कि फरीदाबाद का मौसम कैसे रहने वाला है। और देखो अगर मैं मौसम की बात करूँ ना तो मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो रखा है, यानी कि जो मूड है ना इस टाइम पर वो गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाने का हो गया है। और जब मैं सुबह आई थी ना तो मौसम ने बहुत प्यार से अंगड़ाई ली और बहुत ही मेहरबान है आजकल मौसम। खैर अगर फरीदाबाद की टेम्परेचर की बात करें तो हाईएस्ट टेम्परेचर 31 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ मिनिमम रहने वाला है 27 डिग्री और आपको आज जो ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 82%। लेकिन अगर मैं बारिश की बात करूँ ना तो बारिश की संभावना 70% है आज। यानी कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो अपने साथ अम्ब्रेला जरूर कैरी कीजिए। और अगर अम्ब्रेला अच्छा नहीं लगता तो रेनकोट जरूर लेकर जाएगा, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो आपको भीगने से बचा सकती हैं। और इसके साथ ही अगर डेट प्लान करना हो ना तो आज के दिन कर सकते हो, परफेक्ट दिन है बिकॉज मौसम बहुत अच्छा है। और जब मौसम अच्छा होता है ना तो अच्छा लगता है बाहर घूमना।

0: मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश और बदलते हुए मौसम में सांस के मरीजों के लिए काफ़ी तकलीफें आ सकती हैं। खास तौर पे ध्यान रखने की बात होती है कि जैसे ही बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ती है, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही में बारिश के मौसम में हम गर्मी से सर्दी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो इस चेंजिंग वेदर में सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। खासतौर पर जिनको अस्थमा या COPD नाम की बीमारी है, उनकी सडनली वर्सनिंग होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इनहेलर्स या नेबुलाइजर चलते हैं तो उसको इस मौसम में बिल्कुल भी बंद ना करें। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

हाँ जी, तारीख पर तारीख लेकर आ गई हूँ और इस तारीख को जानने से पहले ना ये हो जाए। अंजलि अंजलि अंजलि, वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज अंजलि इन द हाउस और शो चल रहा है अंजलि ऑन एयर। अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत ही प्यारे सेगमेंट की तरफ हम आ गए हैं जिसका नाम है तारीख पर तारीख। अब तारीख पर तारीख लेके किस बारे में बात हो रही है आज ये भी जानेंगे। आज 6 अगस्त है और आज के दिन मनाया जाता है नेशनल फ्रेश ब्रेथ डे। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना कि ब्रीथ डे कैसे मना सकता है, लेकिन आपको बताइए हमें ओरल हाइजीन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है। अब बात करिए फ्रेश ब्रीथ की, तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बल्कि अच्छी ओरल हेल्थ की भी निशानी हो। तो भाई करना क्या है, करना है आपको दिन में 2 बार ब्रश, टंग क्लीन करना है अच्छे से और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पानी पीते रहना है, बिकॉज पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही डेंटिस्ट रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं सो दैट कि अगर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम भी हो ना तो वो ठीक हो जाए टाइम रहते हुए। तो ये कुछ अच्छी आदतें हैं जिन्हें आज से ही अडॉप्ट कर लीजिए और फिर देखेगा कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आज एक सिंपल सा चैलेंज मैं लेकर आई हूँ। चैलेंज ये है कि स्माइल खुल कर कीजिए, लेकिन उस स्माइल का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है। तो हेल्दी माउथ हेल्दी लाइफ आज का एजेंडा है और इसी मोटिव के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजॉय कीजिए प्यासा ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक गाइज, यू आर लिसनिंग टू फेवरेट सेगमेंट सिनेमा कैप्सूल। मैं हूँ आरजे गीत और यहाँ मैं रिव्यूज नहीं देती बल्कि बताती हूँ कि वीकेंड का डेटा पैक इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मुसाफिर कैफे की, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है इन दिनों। अब ऑनेस्टली ओटीटी पर इतना अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है, रिमोट से ज्यादा तो थंब वर्कआउट कर लेता है। हाफ एन आवर सिर्फ स्क्रॉल करने में निकल जाता है और एंड में वही पुराना सिटकॉम ऑन। लेकिन मुसाफिर कैफे इज अ लिटिल डिफरेंट। सबसे पहले विक्रांत मेसी, ये बंदा भाई एक्टिंग नहीं करता, बस स्क्रीन पर आ जाता है और बाकी के इमोशंस ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। इसको ओवर एक्टिंग का पासवर्ड शायद आज तक मिला ही नहीं। और अच्छी बात ये है कि ये सीरीज अननेसेसरीली लाउड बनने की कोशिश नहीं करती, ना फोर्स्ड एक्शन, ना रैंडम ट्विस्ट, ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में चलता रहता है, बल्कि एवरीथिंग फील सिंपल ऑर्गेनिक। वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी काफी नेचुरल लग रही है। तीनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बिल्कुल एफर्टलेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्लो कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, जो कॉफी पे दो घंटे बैठ सकते हैं और जिन्हें हर 10 मिनट में एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हर एपिसोड के बाद बोलते हो बस ट्विस्ट कहाँ है यार, तो मे बी दिस वंस नॉट योर कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर मूड है समथिंग काम, फील गुड और जेन्युइनली वेल परफॉर्म देखने का, देन मुसाफिर कैफे डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। मैं हूँ गीत और मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमा कैप्सूल में, क्योंकि ओटीटी पर कंटेंट खत्म हो सकता है लेकिन भाई मेरी बातचीत खत्म नहीं होगी। तो वक्त है गाने का, गाना सुनकर आते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

अरे थारी किस्मत में गुलाम लिखेड़ो है। रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिला करे।

हेलो हेलो जी, बॉलीवुड बस लेकर आ गई हूँ मैं। दिस इज आरजे अंजलि इन द हाउस और आप सुन रहे हैं अंजलि ऑनिया सिर्फ और सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और देखिए, अगर मैं बॉलीवुड बस की बात करूँ तो आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उस सिंगर का, उस टीवी होस्ट का जिसे हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, अपने बचपन से नहीं उनके बचपन से। आज हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है आदित्य नारायण का। और मैंने बचपन की बात की थी तो बचपन से ही म्यूजिक की दुनिया से जुड़े हुए हैं आदित्य। कई हिट गाने और टीवी रियलिटी शोज को इन्होंने जिया है। बहुत सारे टीवी शोज में हमें नजर आए हैं, हमेशा हमें एंटरटेन किया है। और वैसे अगर मैं आदित्य की बात करूँ ना तो आदित्य को देखकर एक बात जरूर समझ आती है, टैलेंट तभी चमकता है जब उसके साथ कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी भी हो। और यही हमें आदित्य ने सिखाया है। फिर विश करते हैं इन्हें रेडियो महारानी विष्णु वेरी हैप्पी बर्थडे आदित्य। आप ऐसे ही हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए। बने रहे रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ।

हाँ जी, बातें तो बहुत सारी हो रही है, तो चलिए फिर आपको लेकर चलते हैं स्पोर्ट्स के गलियारों में। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ ना स्पोर्ट्स की, तो एक बहुत ही गुड न्यूज वाला अपडेट मैं लेकर आई हूँ। तो मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ ना, तो जब मेडल आता है ना, तो एक प्राउड मोमेंट होता है हम इंडियंस के लिए। और ऐसा नहीं लगता कि मेडल वो पर्टिकुलर एक खिलाड़ी के घर आया, मेडल देश के लिए आया है। तो अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से एक बहुत ही गुड न्यूज आ गई है। गुड न्यूज ये है, तो भाई भारत की जुड़ोका अश्मिता डे ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इन्होंने विमेंस 48 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में जुड़ो का गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनने का गौरव हासिल किया है। यानी कि ये पहली फीमेल है जिन्होंने जूडो में गोल्ड लिया है और एक इतिहास बनाया है, एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। और ये सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि उन सब यंग एथलीट के लिए इंस्पिरेशन है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो आज की स्पोर्ट्स स्टोरी ना हमें ये बताती है, टैलेंट जब हार्डवर्क से मिलता है तब हिस्ट्री बनती है। अस्मिता डे को रेडियो महारानी की तरफ से बहुत बहुत बधाई है अस्मिता, ऐसे ही भारत का नाम रोशन कीजिए। और प्राउड मोमेंट है ये हम सभी के लिए, बहुत ही प्राउड फील कराया है आपने। और आप ऐसे ही हेल्दी रहिए, इस स्पिरिट के साथ जीते रहिए और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

घर के काम से फ्री हो गए हैं तो चलिए बिजनेस बूस्ट करते हैं। दिस इज अर्जेंटली इन द हाउस और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर मुझे, जहाँ पर ना मैं बहुत सारी बातें आपके साथ करती हूँ और आजकल तो कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज भी लेकर आ गई हूँ। फिलहाल टाइम हो गया बिजनेस बूस्ट का, हाँ वही बिजनेस बूस्ट जहाँ मैं आती हूँ बहुत सारे आइडियाज लेकर और आपको ये बताती हूँ कि होम ग्रोन बिजनेस से आप किस तरह से एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए भाई, आज का आइडिया है कस्टमाइज गिफ्ट हैम्पर बिजनेस का। ये बहुत अच्छा आइडिया है। आजकल बर्थडे, एनिवर्सरी, इवन राखी, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का कल्चर जो है शुरू हो चुका है। तो उस चीज के लिए सबसे परफेक्ट जो बिजनेस आइडिया है वो ये है कि इन सारे इवेंट्स के लिए आप खुद घर पर हैम्पर्स बना सकते हैं और बहुत सारी चीजें उस हैम्पर्स में डाल सकते हैं। कस्टमाइज हैम्पर इसलिए कहा जाता है, किसी को ड्राई फ्रूट चाहिए, किसी को चॉकलेट्स, किसी को कैंडल्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस आपको इजीली मार्केट में मिल भी जाता है। अगर आप बल्क में खरीदते हैं तो डिस्काउंट भी मिलता है। तो देखा कितना शानदार आइडिया मैं आज लेकर आई हूँ। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट से काम चल जाता है। और सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अपना फ्रेंड बनाइए, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट अपलोड कीजिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए और फिर देखिएगा किस तरह से आपका बिजनेस हर घर में पहुंच जाएगा। तो याद जरूर रखिएगा, बिजनेस हमेशा बड़े पैशन से नहीं, बड़े आइडिया से शुरू होता है और हो सकता है आज का ये छोटा सा स्टेप आपके बिजनेस को एक बड़ा ब्रांड बना दे। तो भाई आज का बिजनेस बूस्ट आइडिया तो मैंने आपको दे दिया है, इसे अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आइडिया सच में सक्सेसफुल होता है तो हमें जरूर बताइएगा। आपको पता है ना बताने के लिए कहाँ जाना है, तो फटाफट से जाइए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज भेजिए और ये बताइएगा कि आज का बिजनेस बूस्ट आइडिया आपको कैसा लगा। साथ ही एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर, ये ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मेरा नाम डॉक्टर आनंद है, आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सर्वोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने सही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इज मदर्स मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग कि माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में वो पर्याप्त मात्रा में है। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है, और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली।
1: डॉक्टर कॉलिंग
2: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

कई बार ना हमें कई चीजों के फैक्ट के बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन जब एक दिन पता चलता है ना तो दिमाग एकदम से सरप्राइज हो जाता है कि इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता था। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज अर्जेंटली इन द हाउस। तो अब आ गए हैं हम अपने सेगमेंट डिड यू नो पर। तो भाई आज मैं एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ जो हम बहुत टाइम से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, और ना वो चीज कभी खराब नहीं होती और कभी हमारे दिमाग में आया भी नहीं कि आखिर ये खराब क्यों नहीं होता। तो आज के अमेजिंग फैक्ट में मैं बात करने वाली हूँ शहद के बारे में, यानी कि हनी। अगर मैं बात करूँ ना हनी की, तो आपको पता है हनी उन गिनी चुनी नेचुरल चीजों में से है जो कभी खराब ही नहीं होता। आर्कियोलॉजिस्ट को हजारों साल पुराने इजिप्टियन टोम्स में से भी हनी मिला था, और आपको पता है सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या है, वो आज भी खाने लायक है क्योंकि हनी के अंदर पाई जाती है नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। इसी वजह से अगर उसे सही तरीके से स्टोर किया जाए ना तो बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है हनी, और कभी खराब भी नहीं होता। तो भाई देखा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के पीछे भी कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है ना। तो भाई अगर आज का फैक्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट हमारे साथ भी शेयर करने के लिए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, वहां पर अपना वॉइस मैसेज भेजिए और साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

हेलो हेलो एंटरटेनमेंट के पागल लोग, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, जहां हम स्क्रीन के इस पार की दुनिया को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फनी और फुल मसालेदार अंदाज में डिकोड करते हैं। तो भाई, जिस शो ने जेल के अंदर से इतना ड्रामा बाहर भेजा कि घर बैठे लोगों को भी लगा भाई हमारी लाइफ तो काफी पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉकअप की। तो अब लॉकअप पहुंच चुका है अपने ग्रैंड फिनाले के दरवाजे तक, और जैसे जैसे ट्रॉफी करीब आ रही है, कंटेस्टेंट के असली गेम प्लान भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी शो का रूल सिंपल है। शुरुआत में सब बोलते हैं मैं ना यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, और फाइनली आते आते वही दोस्ती बदल जाती है, सॉरी ब्रो, ट्रॉफी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं आती। इस शो में फाइट्स भी मिले, इमोशंस भी मिले, सीक्रेट्स भी मिले, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहाँ ऑडियंस ने रिमोट नहीं बल्कि अपना पेशेंस पकड़ रखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर? किसके फैंस करेंगे सबसे ज्यादा नॉइस? किसका गेम पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग? और कौन निकलेगा असली जेल का बाजीगर? क्योंकि रियलिटी शो में आखिरी वीक में ना भाई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी का मेकओवर होता है। तो अगर आप भी पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल धमाके का, तो बने रहिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। मैं हूँ गीत और चल रहा है सिनेमा का कैप्सूल।

0: आई है ससुराई।
1: रेडियो महारानी।

0: watch more, log on to www.erosnow.com.
1: हाँ जी, फरीदाबाद वालों, जहाँ भी जाते हो आगे जाके ट्रैफिक में फंस जाते हो। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है अंजलि ऑन एयर। तो भाई अगर अंजलि ऑन एयर आई और ट्रैफिक की बात ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर भाई आगरा रोड या फिर दिल्ली मथुरा हाईवे की तरफ निकलने का प्लान बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपडेटेड होकर जरूर जाइएगा, बिकॉज आपको पता है कि कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रियों को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। आगरा रोड की कई जगहों पर बैरिकेटिंग मिलेगी आज आपको, और साथ ही कुछ रूट्स भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं और जितने भी हैवी व्हीकल्स है उन सबकी एंट्री बंद कर दी गई है। और साथ ही ट्रैफिक को स्मूथ रखने के लिए कम्यूटर्स के लिए अल्टरनेट रूट की अपील की गई है। तो इसीलिए अगर घर से निकल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा जल्दी निकलिए, एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए, गूगल मैप और ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करके जाइएगा, पुलिस की एडवाइजरी जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी प्लानिंग ना आपका बहुत सारा टाइम बचा सकती है, साथ ही आपके मूड को खराब होने से रोक सकती है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर सुबह सुबह मूड खराब होता है ना, तो पूरा दिन खराब जाता है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ आज घर से बाहर निकलेंगे, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निकलेंगे, साथ ही एंजॉय कीजिए ये ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: सो यू एंड रॉबी, हाँ व्हाट्स अप?
2: व्हाटएवर।
3: हे, बट विज रोहन?
2: आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। आई हेट हिम
4: बट आई लव यू।

0: हाँ जी, साइबर स्कैम के लिए सिर्फ इंसानों से बचने की जरूरत नहीं है, आजकल हम जिस एआई के पीछे भाग रहे हैं ना, ये भी हमारे साथ स्कैम कर सकता है। सुनने में थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जितनी तेजी से हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है ना, उतनी ही तेजी से साइबर क्रिमिनल्स भी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई एआई की हेल्प से बनाई जा रही है फेक वेबसाइट, जिसमें इस्तेमाल किया जा रहा है फिशिंग मैसेजेस, फेक वॉइस कॉल और साथ ही डीप फेक वीडियोस। और जहाँ एआई हमारी जिंदगी आसान कर रहा है ना, वहीं ये स्कैमर्स के खूब काम आ रहा है। और इसलिए सिर्फ मैसेज देखकर या आवाज सुनकर किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा। ओटीपी या बैंकिंग डिटेल्स कभी भी शेयर मत कीजिएगा। अगर कोई कॉल या फिर आपको मैसेज बहुत अर्जेंटली आता है तो पहले उस इंसान से वेरीफाई जरूर कीजिएगा जहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन करनी है, देन ही ट्रांजेक्शन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्मार्टनेस की बहुत ज्यादा जरूरी। तो याद रखिए एआई स्मार्ट जरूर है, लेकिन आपसे ज्यादा स्मार्ट तभी बनेगा जब आप बिना सोचे ट्रस्ट कर लेंगे। तो डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा पासवर्ड है अवेयरनेस। तो भाई अपना अवेयरनेस वाला पासवर्ड जरूर लगा लीजिएगा, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस सबके साथ ये चीज शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ना कि आपका कोई रिलेटिव, आपका लव्ड वन आपको कॉल कर रहा है, उसे बहुत अर्जेंसी है पैसों की, तो मत दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ दूसरों की हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प जरूर कीजिएगा, यानी कि अवेयर होना जरूरी है और इन चीजों का ख्याल रखिएगा। साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा।

0: अभी अभी गया है
1: फ्रेंडशिप डे,
0: और फिर से दुनिया भर के दोस्त ऑनलाइन हो गए हैं।

सरहद पर खड़े उन हीरोज के लिए क्या आपके दिल में भी कोई पैगाम है? क्या है ये पहल? जल्द ही पता लगेगा 89.6 रेडियो महारानी पर।

मच्छर भी हमारे रिश्तेदार की तरह है, बिना बोले आ जाते हैं, लेकिन अपने साथ ना बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं। हमें पता है कि एक सीजन आता है जहाँ पर डेंगू मलेरिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ मच्छर नहीं आए हैं, अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। और आज की जो अपडेट है वो हमें ये बताती है कि अपना ख्याल रखना कितना ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ICMR की एक नई स्टडी सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि देश में डेंगू के चारों स्ट्रेन एक्टिव हो गए हैं। अगर मैं इन स्ट्रेन की बात करूँ तो DENV1, DENV2 और इसी तरह से 3 और 4। लेकिन इसी के साथ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि DENV2 है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, और कुछ जगहों पर तो ये स्ट्रेन इतना ज्यादा एक्टिव है कि लोगों को बहुत सारे इन्फेक्शंस हो रहे हैं। इसलिए इस बार बस ये कहना चाहती हूँ कि डेंगू को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, अपने रिश्तेदारों की तरह मत लेना कि ठीक है टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया, इस बार गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपको बहुत तेज बुखार है, बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द है, और अगर आप बहुत जल्दी जल्दी थकान फील कर रहे हैं तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बताए जा रहे हैं कि डेंगू के इनिशियल स्टेज में हो रहे हैं। तो प्लीज जाकर डॉक्टर को दिखाएं, अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं, अपना ख्याल रखें। और बस इसी के साथ आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है, जैसे कि घर के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होने देना है, और साथ ही फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करना है, और जैसे कि सभी को पता है कि प्रिवेंशन ही डेंगू से बचने का सबसे बड़ा वेपन है। सो इस वेपन का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

नाम डॉक्टर आनंद है। आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सर्वोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने सही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इस मदर्स मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग कि माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में वो पर्याप्त मात्रा में हैं। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली। डॉक्टर कॉलिंग।

क्या ही कहने इस इंटरनेट के, कभी कभी ना इंटरनेट पर इस तरह की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, जिन्हें देखकर बस एक ही डायलॉग याद आता है, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? या फिर इंजीनियर बनना जरूरी नहीं होता, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अब मैंने इतनी सारी बात किया, आखिर जानते हैं कि हुआ क्या? तो भाई सोशल मीडिया पर ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन के चार्जिंग सॉकेट में घर से लाया हुआ फर्राटा फैन चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ फैन चला ही नहीं, क्योंकि फैन को चलने के लिए ना 220 वोल्ट चाहिए होता है और ट्रेन का सॉकेट होता है 110 वोल्ट का। तो फिर क्या था, जब ये वीडियो वायरल हुआ ना तो कमेंट सेक्शन में मीम्स और जोक की बारिश शुरू हो गई। वैसे देखो जुगाड़ हमारी पहचान जरूर है, लेकिन हर जगह जुगाड़ काम नहीं आता, ये चीज भी याद रखनी चाहिए। थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज और सेफ्टी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। और हम हमेशा क्यों भूल जाते हैं, जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं अपने साथ साथ हमें बाकी पैसेंजर की भी जान के बारे में सोचना चाहिए भाई, उनकी सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, इतने सेल्फिश क्यों हैं? तो भाई आज का इंसिडेंट हमें ये बताता है, सिंपल सा फंडा है, हर प्लग हर सॉकेट के लिए नहीं होता, और सोशल मीडिया पर जो भी वायरल दिखे उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ही लीजिए, घर पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। और हाँ, इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

ले आ गया फिर तेरे दरवाजे के बरसात से बचने का और बहाना न मिला। बाहें तेरी घर सी लगी और इस दिल को कोई ठिकाना न मिला।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, कभी कभी करंट भी लगता है, और इस करंट का नाम है खतरों के खिलाड़ी 15। रोहित शेट्टी वंस अगेन इज बैक, और इस बार भी उनका मिशन बिल्कुल क्लियर है, कंटेस्टेंट के कंफर्ट जोन को परमानेंटली अनइंस्टॉल कर देना। नए सीजन फुल ऑन एक्शन मोड में है, हेलीकॉप्टर हो, पानी हो, क्रीपी क्रू लाइट्स हो या स्काई हाई स्टंट्स, यहाँ हर एपिसोड एक रिमाइंडर है कि घर की EMI भरना शायद इन स्टंट से ज्यादा आसान है। इस सीजन के कंटेस्टेंट लाइनअप भी काफी इंटरेस्टिंग है, हर कोई ट्रॉफी जीतने आया है, लेकिन स्टंट शुरू होते ही सबकी बॉडी लैंग्वेज एक ही बात बोलती है, मम्मी मैं घर आ जाऊं क्या। और रोहित शेट्टी उनके एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि उन्हें कंटेस्टेंट से ज्यादा मजा उनके रिएक्शन देखने में आता है। सोशल मीडिया पर भी शो को लेकर काफी ज्यादा बज बना हुआ है, फैंस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टंट्स की क्लिप्स वायरल हो रही है, और हर एपिसोड के बाद एक ही डिबेट चलती है, ये स्टंट में मैं होता तो भाई मैं तो कर लेता। हाँ जी, सोफे पर बैठकर तो हम सब कर ही सकते हैं ना। तो फिलहाल सीजन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया है, अब देखना ये है कि कौन अपने डर को हराकर ट्रॉफी तक पहुंचता है और कौन सिर्फ मीम्स का फेवरेट बनकर रह जाता है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। तो अगली अपडेट में फिर मिलेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और फ्रेश डोज के साथ।

कैसे हैं आप सब। देखिए हाल चाल तो मैंने आपका 7 बजे ही पूछ लिया था और अब बातें करने के लिए ना बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन उससे पहले एक एक्सरसाइज हो जाए। चलिए फिर जलाते हैं अपने अपने दिमाग की बत्ती। अब आप दिमाग की बत्ती से तो समझ ही गए होंगे कि मैं लेकर आ गई हूँ फरीदाबाद की पहेली। तो भाई आज की पहेली सुनेगा थोड़ा ध्यान से। तो भाई आज की पहेली है, मैं फरीदाबाद की एक ऐसी जगह हूँ जहाँ हर साल हजारों लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। मैं अरावली की पहाड़ियों के बीच बसी हूँ और मेरी गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो फटाफट से बताइए मैं कौन हूँ। अब जवाब अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि आपको कहाँ जाना है। तो फटाफट से हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, वहाँ पर सही जवाब दीजिएगा। और आपको पता है ना, जिन्होंने सही जवाब दिया होता है उनके जवाब में यहाँ पर सुनाती हूँ, यानी कि रेडियो महारानी पर आपकी आवाज आती है। तो भाई फटाफट से सोचिए, गेस कीजिए और फटाफट से अंशली ऑन एयर पर आ जाइए अपनी आवाज लेकर अपने सही जवाब के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है छोटे से म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाँ जी, आप भी उन्हीं लोगों में से है जो घंटों ट्रैफिक में फंसे रहता है और अभी भी ट्रैफिक में ही बैठे हैं शायद से। अगर ट्रैफिक में बैठे हुए ना, तो आज का फिटनेस वाला भंडा खास आपके लिए। यहाँ पर ना आज मैं एक नई स्टडी के साथ आई। डेली मैं फिटनेस वाला फंडा लेकर आती हूँ, लेकिन आज कुछ फैक्ट्स लेकर आई हूँ। और ये स्टडी ये बताती है कि अगर आप भी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और ट्रैफिक का तेज शोर सुनते रहते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको पार्किंसंस डिजीज के बढ़ने का रिस्क बढ़ जाए। हालांकि रिसर्चर्स ने ये भी साफ कहा है कि इसे ये साबित नहीं होता कि ट्रैफिक का शोर ही पार्किंसंस का सीधा कारण है। फिलहाल दोनों के बीच में एक कनेक्शन देखा गया। तो आज के हेल्दी मंत्र ये है, जहां पॉसिबल हो बहुत ज्यादा नॉइज एक्सपोजर से बचिए। लॉन्ग ड्राइव के दौरान विंडोज हमेशा बंद रखिए। अननेसेसरी हॉकिंग से बचिए। अपनी हियरिंग और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखिए। और छोटी छोटी हेल्दी हैबिट लॉन्ग टर्म हेल्थ में आपको बड़ा फायदा दे सकती है। इन चीजों का ख्याल रखिएगा। साथ ही हेल्दी रहिए, फिट रहिए और सुनते रहिए अंशली ऑन एयर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: बहुत इंतजार कराया ना, लेकिन अब इंतजार का फल आपको मिलने वाला है, यानी कि अब मैं आ गई हूँ आपकी पहेली का जवाब लेकर। तो वही देखिए, बहुत सारे मुझे जवाब आए और आई एम शॉक्ड कि इतनी सारी जगहें हैं फरीदाबाद में जो एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन सही जवाब भी मिले हैं। तो टाइम हो गया है सही जवाब आपको सुनाने का, तो चलिए पहले इनका जवाब सुनते हैं।
1: हाय, मेरा नाम अनुष्का है, मैं फरीदाबाद से हूँ और जो पहेली तुमने पूछी है वो मेरी फेवरेट जगह है, मैं वहाँ हमेशा जाती रहती हूँ और उस जगह का नाम है टेंपल मगर वाणी एरिया, महादेव मंदिर मगर।
0: हाँ जी अनुष्का जी, तो आप हैं आज की लकी विनर, आपने सही जवाब दिया है बिल्कुल, और का मतलब ये है कि आप फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हैं और इस जगह आप आते जाते रहते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही पूरे फरीदाबाद को एक्सप्लोर कीजिए, बहुत कुछ है फरीदाबाद में एक्सप्लोर करने के लिए। और साथ ही अगर आपका जवाब मिस हो गया है तो डोंट वरी, कल फिर से आएंगे एक नई पहेली के साथ, एक नए जवाब के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी बेटवे, मिलता है म्यूजिक के बाद।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

89.6 रेडियो महारानी पर 1947 वापस आ रहा है। कब, कहां, कैसे, जल्द पता लगेगा।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर किसी ट्रेलर ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है तो वो है रामायण। 30 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड बिलीव मी इंटरनेट लिटरली पॉज हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने स्केल के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विजुअल्स की। VFX इतने ग्रैंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं कि काफी लोग बोल रहे हैं फाइनली माइथोलॉजी इज गेटिंग द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। और हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है रणबीर कपूर ने। ट्रेलर आने से पहले बहुत सारे लोगों का एक ही कंसर्न था एनिमल के बाद क्या वो श्रीराम के रोल में एक्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद काफी हद तक वो डाउट खत्म होता दिख रहा है। उनका काम, स्क्रीन प्रेजेंस और सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी। एस सीता बिल्कुल ग्रेसफुल, एलिगेंट और एफर्टलेस लग रही हैं। और अब बात आती है उस एंट्री की जिसका सबको था इंतजार, यश एस रावण। पावरफुल लुक, रॉयल ऑरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड की प्रेजेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। काफी लोग तो कह रहे हैं कि रावण का कैरेक्टर ऑलरेडी घूस पंप्स दे रहा है। और हाँ, एक बात फैंस ने जरूर नोटिस की है, ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्प्स दिखा ही नहीं और बस इसी वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई है। शायद मेकर्स ने वो बिगेस्ट मोमेंट फिल्म के लिए सेव कर रखे हो। ओवरऑल ट्रेलर को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पांस दिया है और बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिवाली 2026 का। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।

हाँ जी, बहुत सारी बातें मैंने आज आपके साथ की है। फिलहाल आपको पता ही होगा मैं क्यों आई हूँ फिर से। देखो मैं आई हूँ टाटा बाय बाय करने के लिए, बिकॉज मेरे 4 घंटे यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। और सुबह आई थी 7 बजे, बहुत सारी बातें आपके साथ की है, बहुत सारी अपडेट्स आपको दिए, लेकिन अब टाइम हो गया ये जानने का कि आज टिफिन में आखिर क्या है। तो भाई देखो, मैंने अभी अपना टिफिन खोल कर देखा है, क्योंकि आज मुझे ये नहीं पता था कि मम्मी ने सुबह टिफिन में दिया क्या है। क्योंकि रात को मम्मी ने पूछा था कि अंजलि सुबह करेले लेकर जाओगी क्या, करेले मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा था आज टिफिन नहीं लेकर आऊंगी। लेकिन मम्मियों का तो आपको पता ही है ना, ये बिना बच्चों को टिफिन दिए भेज ही नहीं सकती। तो अभी मैंने जब टिफिन खोला ना, तो टिफिन में थी आलू गोभी की सब्जी, गर्मा गर्म पराठे और दही। बस मेरा दिन बन गया, और अब मेरा मन कर रहा है मैं फटाफट से जाके अपना लंच कर लूं, बिकॉज अब मुझे भूख लग गई है। मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ की है। खैर आप भी मुझे बताइएगा कि आज आपके टिफिन में क्या है, और आपको बताएं बताने के लिए कहां जाना है। बताने के लिए जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, वहां पर अपना वॉइस मैसेज भेजिए, और हां वहां पर आप अपने लंच वॉकिंग पिक्चर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं सेम जगह सेम प्लेस, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। मैं फिल्मी डॉनिक आज मॉर्निंग यहाँ बहुत ही चर्चाएं करने वाला हूँ कि इस वीकेंड कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमाघरों में रिलीज होने को हैं तैयार। कुछ का होगा आगाज सिल्वर स्क्रीन पर, तो कुछ होंगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम। नई जोड़ियां, नए ट्रेलर टीजर, तो कुछ गाने, कहीं होगा डायरेक्टोरियल डेब्यू। ये सारी चर्चाएं करने वाला हूं हिंदी पट्टी से लेकर के साउथ इंडस्ट्री तक की किस्से कहानियां, पंजाबी इंडस्ट्री की धमाकेदार गानों से लेकर के हॉलीवुड के सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर सीरीज तक की करने वाला हूं चर्चाएं। लेकिन सिनेमा के गलियारों से ये सारी चर्चाएं करने से पहले, यानी कि इन गलियारों में घुमाने से पहले, सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: Luxury is not about what you wear, it's about how you carry yourself. Ilahe by Ritu invites you to Jashn, a premium fashion and lifestyle exhibition where elegance meets creativity and style meets sophistication.
1: यहाँ आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिजाइनर ensembles, स्टेटमेंट ज्वेलरी, लग्जूरियस एसेसरीज और हैंड पिक लाइफस्टाइल ब्रांड्स, ऑल क्यूरेटेड फॉर दोज हु अप्रिशिएट द फाइनर थिंग्स इन लाइफ. सो मार्क योर कैलेंडर्स, 6 अगस्त, 11 AM टू 8 PM, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद.
0: कम एक्सप्लोर अ वर्ल्ड ऑफ फैशन, एलिगेंस एंड लग्जरी.
1: जश्न इलाहे बाय रितु.

89.6 रेडियो महारानी पर 1947 वापस आ रहा है। कब, कहां, कैसे, जल्द पता लगेगा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं द ओडिसी के बारे में। बात की जाए तो लगभग 13 दिन हो चुके हैं और करोड़ों की कमाई करते हुए नजर आई कलेक्शन। इंडियन नेट 132 करोड़ और इंडियन ग्रॉस 158 करोड़ की कमाई के आंकड़े पर पहुंची है ओडिसी इन इंडिया। बात करें इस कहानी की तो अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आ रहा है इस कहानी को। इसमें जन नायकन से टक्कर का भी जिक्र होते नजर आया जिससे ओडिसी की कमाई पर असर पड़ा। दोनों की कमाई पर वैसे असर पड़ा लेकिन ओडिसी की अगर बात की जाए तो हॉलीवुड की ऐसी कहानी जो इंडियन स्क्रीन पर इंडियन व्यूअर्स से अच्छा खासा प्यार बटोरती हुई नजर आई है। बाकी ऐसी चर्चा करते रहूँ उस पर रिकॉर्ड।

0: मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश और बदलते हुए मौसम में सांस के मरीजों के लिए काफ़ी तकलीफें आ सकती हैं। खास तौर पे ध्यान रखने की बात होती है कि जैसे ही बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ती है, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा। साथ ही में बारिश के मौसम में हम गर्मी से सर्दी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो इस चेंजिंग वेदर में सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। खासतौर पर जिनको अस्थमा या सीओपीडी नाम की बीमारी है, उनकी सडनली वर्सनिंग होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इनहेलर्स या नेबुलाइजर चलते हैं तो उसको इस मौसम में बिल्कुल भी बंद ना करें। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फायर। यहाँ बात करते हैं दोस्तों अब रामायण के ट्रेलर में विवेक ओबेरॉय की अगर बात की जाए तो लुक वायरल होता नजर आ, जिसमें विद्युत जम के रूप में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि देखिए ट्रेलर के बाद फैंस ने उन्हें एक युद्ध सीन में पहचान लिया और जहां और रावण से लड़ते हुए दिख रहे हैं। उनकी भूमिका को राक्षस राजकुमार बताया गया और कहा जा रहा है कि ये किरदार रावण के सत्ता में आने की कहानी में है। कहा जा रही विवेक ओबेरॉय ने इस फिल्म के लिए फीस नहीं ली और इसे दान करने की बात कही। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रेलर में सिर्फ 2 सेकंड के लिए दिखते हैं लेकिन भारी दाढ़ी और हेडगियर वाले लुक ने उनकी और सबका ध्यान खींचा। ट्रेलर लोगों ने अच्छा खासा पसंद किया है रामायण का और रामायण के ट्रेलर रिलीजिंग के बाद हर किसी का इंतजार है अब कहानी की रिलीजिंग को लेकर। कहानी रिलीज होगी एक पार्ट और एक पार्ट में कहां तक कहानी दिखाई जाने वाली, क्या कुछ धमाल होने वाले उसका रहेगा इंतजार, बाकी चर्चा उतरेंगे उससे पहले कॉर्ड।

सिनेमा का कैप्सूल। सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, कभी कभी करंट भी लगता है, और इस करंट का नाम है खतरों के खिलाड़ी 15। रोहित शेट्टी वंस अगेन इज बैक, और इस बार भी उनका मिशन बिल्कुल क्लियर है, कंटेस्टेंट के कंफर्ट जोन को परमानेंटली अनइंस्टॉल कर देना। नए सीजन फुल लॉन एक्शन मोड में है, हेलीकॉप्टर हो, पानी हो, क्रीपी क्रू लाइस हो या स्काई हाई स्टंट्स, यहाँ हर एपिसोड एक रिमाइंडर है कि घर की EMI भरना शायद इन स्टंट से ज्यादा आसान है। इस सीजन के कंटेस्टेंट लाइनअप भी काफी इंटरेस्टिंग है, हर कोई ट्रॉफी जीतने आया है, लेकिन स्टंट शुरू होते ही सबकी बॉडी लैंग्वेज एक ही बात बोलती है, मम्मी मैं घर आ जाऊं क्या। और रोहित शेट्टी उनके एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि उन्हें कंटेस्टेंट से ज्यादा मजा उनके रिएक्शन देखने में आता है। सोशल मीडिया पर भी शो को लेकर काफी ज्यादा बज बना हुआ है, फैंस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टंट्स की क्लिप्स वायरल हो रही है, और हर एपिसोड के बाद एक ही डिबेट चलती है, ये स्टंट में मैं होता तो भाई मैं तो कर लेता। हां जी, सोफे पर बैठकर तो हम सब कर ही सकते हैं ना। तो फिलहाल सीजन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया है, अब देखना यह है कि कौन अपने डर को हरा कर ट्रॉफी तक पहुंचता है और कौन सिर्फ मीम्स का फेवरेट बनकर रह जाता है। मैं हूं गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। तो अगली अपडेट में फिर मिलेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और फ्रेश डोज के साथ। हाँ जी, साइबर स्कैम के लिए सिर्फ इंसानों से बचने की जरूरत नहीं है, आजकल हम जिस AI के पीछे भाग रहे हैं ना, ये भी हमारे साथ स्कैम कर सकता है। आई नो सुनने में थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जितनी तेजी से हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है ना, उतनी ही तेजी से साइबर क्रिमिनल्स भी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई AI की हेल्प से बनाई जा रही है फेक वेबसाइट, जिसमें इस्तेमाल किया जा रहा है फिशिंग मैसेजेस, फेक वॉइस कॉल और साथ ही डीप फेक वीडियो। जहाँ AI हमारी जिंदगी आसान कर रहा है ना, वही ये स्कैमर्स के खूब काम आ रहा है। और इसलिए सिर्फ मैसेज देखकर या आवाज सुनकर किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा, OTP या बैंकिंग डिटेल्स कभी भी शेयर मत कीजिएगा। अगर कोई कॉल या फिर आपको मैसेज बहुत अर्जेंटली आता है तो पहले उस इंसान से वेरीफाई जरूर कीजिएगा जहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन करनी है, देन ही ट्रांजेक्शन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्मार्टनेस की बहुत ज्यादा जरूरत। तो याद रखिए AI स्मार्ट जरूर है, लेकिन आपसे ज्यादा स्मार्ट तभी बनेगा जब आप बिना सोचे ट्रस्ट कर लेंगे। तो डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा पासवर्ड है अवेयरनेस, तो भाई अपना अवेयरनेस वाला पासवर्ड जरूर लगा लीजिएगा, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस सबके साथ ये चीज शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ना कि आपका कोई रिलेटिव, आपका लव्ड वन आपको कॉल कर रहा है, उसे बहुत अर्जेंसी है पैसों की, तो मत दीजिएगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ दूसरों की हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प जरूर कीजिएगा, यानी कि अवेयर होना जरूरी है, और इन चीजों का ख्याल रखिएगा। साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक। Best of Anjali.

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां दोस्तों हम बात करते हैं स्पाइडरमैन की, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। जहां अगर बात करें तो हॉलीवुड की सबसे बड़ी डे वन ओपनर बन गई है ये कहानी। फिल्म ने पहले ही दिन 32.38 करोड़ का कलेक्शन किया और बाद में आने वाले अगर बात करें इंडियन नेट लगभग 60.6 करोड़ रही, इंडियन ग्रॉस 72.44 करोड़ बताएगा, जो एवेंजर्स एंड गेम से भी आगे निकला। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अच्छा खासा प्यार बटोरती नजर आई। जहां बात करें फैंस बेसब्री से इंतजार करते कि स्पाइडरमैन का अगला किश्त कब आएगा, ये किरदार क्या। कहानी में क्या कुछ नया रोचक दिखने वाला है इसका इंतजार था और कहानी रिलीज होते सारी फैंस ने कहानी को खूब एंजॉय किया और स्पाइडरमैन के नए किरदार को। चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और

अभी अभी गया है फ्रेंडशिप डे, और फिर से दुनिया भर के दोस्त ऑनलाइन हो गए हैं।

फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं टॉम हॉलैंड ने। चलो मार्वल और स्पाइडरमैन के भविष्य का एक लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया जिसमें उनकी जगह किसी और एक्टर को यह रोल सौंपना भी शामिल है। कहा जा रहा है कि वे होम के बाद से ही ये प्लान तैयार हो गया था। साथ ही यह भी कहा कि खुशी खुशी अलविदा कह देंगे अपने किरदार के लिए, जहां टॉम हॉलैंड ने उन कोपर को अपने वर्दी सक्सेसर के तौर पर नाम लिया। लेकिन मार्वल और पूरी कास्ट ने किसी रिप्लेसमेंट की अभी अनाउंसमेंट नहीं की, ये सिर्फ टॉम की पर्सनल प्रेफरेंस और फ्यूचर प्लान्स की चर्चा है। अब क्या सच में ऐसा होगा, क्या सच में अब कोई और किरदार दिखने वाला है यही करेक्टर लेकिन किसी और चेहरे के साथ, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा। अभी फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अगर ऐसा होगा तो वो कौन किरदार होने वाला है, फैंस इस बात को जरूर जानना चाहेंगे क्या वो इस कैरेक्टर में जचने वाला है या फिर नहीं।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त

स्पीच करी। एल्विश दो बार के चैंपियन के तौर पर को क्रैंक्स की मेंटरशिप करेंगे, तो वही तेजस्वी प्रकाश पहली बार मेंटर के रूप में आएंगे। आरुष बोला टीम की मेंटर होने वांगे। साथ ही अगर बात की जाए, ये शो जैसे ही प्रीमियर हुआ, प्रीमियर होने के बाद से ही अपने अगले सीजन में भी अच्छा खासा प्यार बटोरता नजर आ रहा है। तीन बड़े चेहरे और तीन बिग टीम्स, इन टीम्स में अब टक्कर मुकाबला कैसा होने वाला है, तो सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पता चलेगा कि इस बार कौन सी टीम धमाल मचाएगी और कौन सा मेंटर या फिर कौन सा एक ऐसा चर्चित चेहरा अपनी टीम को जिता पाएगा। रहेगा इंतजार, बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महाराज।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, कभी कभी करंट भी लगता है और इस करंट का नाम है खतरों के खिलाड़ी 15। रोहित शेट्टी वंस अगेन इज बैक और इस बार भी उनका मिशन बिल्कुल क्लियर है, कंटेस्टेंट के कंफर्ट जोन को परमानेंटली अनइंस्टॉल कर देना। नए सीजन फुल ऑन एक्शन मोड में है, हेलीकॉप्टर हो, पानी हो, क्रीपी क्रू लाइस हो या स्काई हाई स्टंट्स, यहाँ हर एपिसोड एक रिमाइंडर है कि घर की EMI भरना शायद इन स्टंट से ज्यादा आसान है। इस सीजन के कंटेस्टेंट लाइनअप भी काफी इंटरेस्टिंग है, हर कोई ट्रॉफी जीतने आया है, लेकिन स्टंट शुरू होते ही सबकी बॉडी लैंग्वेज एक ही बात बोलती है, मम्मी मैं घर आ जाऊं क्या। और रोहित शेट्टी उनके एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि उन्हें कंटेस्टेंट से ज्यादा मजा उनके रिएक्शन देखने में आता है। सोशल मीडिया पर भी शो को लेकर काफी ज्यादा बज़ बना हुआ है, फैंस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टंट्स की क्लिप

हाँ जी, साइबर स्कैम के लिए सिर्फ इंसानों से बचने की जरूरत नहीं है, आजकल हम जिस एआई के पीछे भाग रहे हैं ना, ये भी हमारे साथ स्कैम कर सकता है। बेस्ट ऑफ अंजलि। आई नो सुनने में थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जितनी तेजी

मेरी आवाज सुनकर किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा। ओटीपी या बैंकिंग डिटेल्स कभी भी शेयर मत कीजिएगा। अगर कोई कॉल या फिर आपको मैसेज बहुत अर्जेंटली आता है तो पहले उस इंसान से वेरीफाई जरूर कीजिएगा जहां पर आपको ट्रांजेक्शन करनी है, देन ही ट्रांजेक्शन कीजिएगा, क्योंकि यहां पर स्मार्टनेस की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो याद रखिए, AI स्मार्ट जरूर है, लेकिन आपसे ज्यादा स्मार्ट तभी बनेगा जब आप बिना सोचे ट्रस्ट कर लेंगे। तो डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा पासवर्ड है अवेयरनेस। तो भाई अपना अवेयरनेस वाला पासवर्ड जरूर लगा लीजिएगा, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वन सबके साथ ये चीज शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ना कि आपका कोई रिलेटिव, आपका लव्ड वन आपको कॉल कर रहा है, उसे बहुत अर्जेंसी है पैसों की, तो मत दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ दूसरों की हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प जरूर कीजिएगा, यानी कि अवेयर होना जरूरी है और इन चीजों का ख्याल रखिएगा। साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक। Best of Anjali.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज सिनेमा के कैलेंडर में जहां पे रत्ना पाठक शाह के बाद, रत्ना पाठक की अगर बात करें तो एक्टिंग सफर थिएटर से शुरू हुआ, अपने स्टेज पर सालों तक काम किया और फिर टेलीविजन और बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने हर किरदार को अपनी नेचुरल एक्टिंग और जबरदस्त एक्सप्रेशन से यादगार बना दिया। कॉमेडी हो, फैमिली ड्रामा या सीरियस रोल, रत्ना पाठक शाह ने हर जेनर में अपनी अलग पहचान बनाई। 1980 के दौर में टीवी सीरियल इधर उधर से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद कई फिल्मों और टीवी शोज में अपनी दमदार एक्टिंग से को प्यार बटोरा। उनकी डायलॉग डिलीवरी और रियलिस्टिक एक्टिंग की वजह से वो इंडस्ट्री की सबसे रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस में शुमार की जाती हैं। उनके बारे में ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी।

सरहद पर खड़े उन हीरोज के लिए क्या आपके दिल में भी कोई पैगाम है? क्या है ये पहल? जल्द ही पता लगेगा 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं रत्ना पाठक शाह के बारे में, जहाँ इनके करियर की कुछ यादगार कहानियों की यानी कि फिल्मों की अगर बात करो तो जाने तू या जाने ना, कपूर एंड सन्स, साराभाई वर्सेस साराभाई। जहाँ इस कहानी में माया साराभाई का उनका स्टाइलिश और विडी करेक्टर आज भी इंडियन टेलीविजन के सबसे आइकॉनिक करेक्टर्स में गिना जाता। रत्ना पाठक शाह वेटेरियन एक्टर नसीरुद्दीन शाह की वाइफ हैं और दोनों ने थिएटर और सिनेमा की दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट में से एक माने जाते हैं। हमेशा क्वालिटी रोल्स को इम्पोर्टेंस दिया और हर जनरेशन के साथ खुद को नए अंदाज में पेश किया। उनकी एक्टिंग सिंप्लिसिटी और कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है, इसी वजह से आज भी उनकी हर परफॉर्मेंस ऑडियंस को याद रह जाती है। जहां सबसे ज्यादा फेवरेट तो साराभाई साराभाई का, माया साराभाई का किरदार ही इनका फेवरेट रहा। ये खुद कह रही कि ये किरदार निभाने के लिए जब मिला तो मुझे नहीं पता कि इतना था इस किरदार से लगाव हो जाएगा और लोगों को भी पसंद आएगा। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं होती रहेंगी लेकिन आज नहीं, आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह करूंगा डेरो बातें। तब तक सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छटके।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है,

मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश और बदलते हुए मौसम में सांस के मरीजों के लिए काफ़ी तकलीफें आ सकती हैं। खास तौर पे ध्यान रखने की बात होती है कि जैसे ही बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ती है, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही में बारिश के मौसम में हम गर्मी से सर्दी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो इस चेंजिंग वेदर में सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। खासतौर पर जिनको अस्थमा या सीओपीडी नाम की बीमारी है, उनकी सडनली वर्सनिंग होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इनहेलर या नेबुलाइजर चलते हैं तो उसको इस मौसम में बिल्कुल भी बंद ना करें। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

0: तो देखने दो।
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो।
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए खुल।

0: सबसे पहले अगर आप इस वक्त बारिश में कहीं फंसे हुए हैं, ट्रैफिक में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं या ऑफिस की विंडो से बारिश देखते हुए चाय का मजा ले रहे हैं तो ये शो स्पेशली आपके लिए है। वैसे बारिश की ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये चाहे कितनी भी तेज हो, 2 मिनट के लिए ही सही हमें अपनी बिजी लाइफ से पॉज लेना सिखा देती है। तो अगर आज का दिन थोड़ा हेक्टिक रहा हो, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अगले 2 घंटे हम बात करेंगे ट्रेंडिंग मीम्स की, जेंजी की डिक्शनरी भी खोलेंगे, बॉलीवुड की फ्रेश गॉसिप भी होगी और बीच बीच में बजेंगे आपके फेवरेट गाने। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं द हैप्पी आवर्स सिर्फ 89.6 रेडियो महारानी पर। तो चाय हो या कॉफी, कार हो या ऑफिस डेस्क, जहाँ भी है वॉल्यूम थोड़ा ऑफिशियली शुरू हो चुका है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
1: So, you and Robbie, huh? What's up?
2: Whatever.
1: Hey, but where's Rohan?
2: I don't know and I don't care. I hate him.
3: But I love you.

0: काफी स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

क्या आपको कभी किसी ने बोला है कि यार तेरी रिज तो नेक्स्ट लेवल है? तो घबराइए मत, ये कोई नई बीमारी का नाम नहीं है और ना ही ये कोई गाली है। आजकल इंस्टाग्राम रील्स हो, कमेंट सेक्शन हो, एक वर्ड बहुत सुनने को मिल रहा है, रिज। तो आखिर इसका मतलब क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इसको समझें तो अगर किसी के पास ऐसा कॉन्फिडेंस हो, ऐसे बात करने का कोई स्टाइल हो कि सामने वाला बिना एफर्ट के ही इम्प्रेस हो जाए, तो इसको जेंजी शब्दों में रिज बोला जाता है। वैसे एक मिथ क्लियर कर देती हूँ, रिज का मतलब गुड लुक्स ही नहीं होता। कभी कभी एक अच्छी स्माइल, एक फनी रिप्लाई या किसी से रिस्पेक्टफुली बात करना भी रियल रिज होता है। और आपके दोस्त आपकी कि भाई तू रिज दिख रहा है, तो समझ जाना आपका कॉन्फिडेंस नोटिस किया गया है। तो आज का जेन ज़ेड डिक्शनरी वर्ड था रिज। हो सकता है इसके बाद आप भी ये वर्ड यूज करने लग जाओ। चलिए अब म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, गाना एंजॉय कीजिए और गाने के बाद मिलते हैं मीम चेक में, जहां बात होगी उस एक्सप्रेशन की जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

कितना दी मशीन बैड बॉय ऑन द ट्रैक बेबी करे बाउंस जैसे हिटरों के चेक सर पे है क्राउन बेबी नो कैप सिक मेरी ट्रिप मेरी सिक बो कैप बच्चे बच्चे घोराटे मेरा रैप

मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।

सुनो सुनो सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

आजकल जब भी हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, एक ही चेहरा बार बार दिख जाता है। और मजेदार बात यह है, ना कोई इसमें डायलॉग है, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, बस एक एक्सप्रेशन, और पूरे इंस्टाग्राम पर इसी एक्सप्रेशन की चर्चा चल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रवि किशन के वायरल एक्सप्रेशन की। अब तो हाल ये है कि बॉस एक्स्ट्रा काम दे दो तो उस पे मीम, जब अब तो हाल ये हो गया है कि कॉर्पोरेट रील्स भी इसी एक्सप्रेशन को लेकर बनाई जा रही हैं। वैसे मीम्स की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, कभी कभी एक एक्सप्रेशन हजार वर्ड से ज्यादा रिलेटेबल लग जाता है। चलिए अब एक मस्त सा गाना एंजॉय कीजिए, और गाने के बाद मिलते हैं चार लोग क्या कहेंगे में। आज बात होगी एक ऐसी हैबिट की जो कभी कभी हमारे डिसीजन से ज्यादा हमारी कंफ्यूजन को कंट्रोल करती है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

वेलकम बैक गाइज, यू आर लिसनिंग टू फेवरेट सेगमेंट सिनेमा कैप्सूल। मैं हूँ आरजे गीत और यहाँ मैं रिव्यूज नहीं देती बल्कि बताती हूँ कि वीकेंड का डेटा पैक इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मुसाफिर कैफे की, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है इन दिनों। अब ऑनेस्टली ओटीटी पर इतना अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है, रिमोट से ज्यादा तो थंब वर्कआउट कर लेता है, हाफ एन आवर सिर्फ स्क्रॉल करने में निकल जाता है और एंड में वही पुराना सिटकॉम ऑन। लेकिन मुसाफिर कैफे इज अ लिटिल डिफरेंट। सबसे पहले विक्रांत मेसी, ये बंदा भाई एक्टिंग नहीं करता, बस स्क्रीन पर आ जाता है और बाकी के इमोशंस ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। इसको ओवर एक्टिंग का पासवर्ड शायद आज तक मिला ही नहीं। और अच्छी बात ये है कि ये सीरीज अननेसेसरीली लाउड बनने की कोशिश नहीं करती, ना फोर्स्ड एक्शन, ना रैंडम ट्विस्ट, ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में चलता रहता है, बल्कि एवरीथिंग फील सिंपल ऑर्गेनिक। वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी काफी नेचुरल लग रही है, तीनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बिल्कुल एफर्टलेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्लो कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, जो कॉफी पे दो घंटे बैठ सकते हैं और जिन्हें हर 10 मिनट में एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हर एपिसोड के बाद बोलते हो बस ट्विस्ट कहाँ है यार, तो मे बी दिस वंस नॉट योर कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर मूड है समथिंग काम, फील गुड और जेन्युइनली वेल परफॉर्म देखने का, देन मुसाफिर कैफे डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। मैं हूँ गीत और मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमा कैप्सूल में, क्योंकि ओटीटी पर कंटेंट खत्म हो सकता है लेकिन भाई मेरी बातचीत खत्म नहीं होगी। तो वक्त है गाने का, गाना सुनकर आते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

एक बात बताओ, क्या आपने कभी नोटिस किया है, हम लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस भी कभी कभी उन लोगों से पूछ लेते हैं जो खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको वीकेंड पे बाहर निकलना है घर से या घर पर ही नेटफ्लिक्स देख के चिल करना है। कुछ ही दिन पहले मेरा एक दोस्त नया फोन लेने वाला था, तो उसको मेरे दूसरे दोस्त ने बोला कि आईफोन ले ले, और उसने फिर किसी और से पूछा तो उसने कहा कि एंड्रॉइड ही बेस्ट है। फिर उसने किसी और से पूछा तो उसने बोला कि दिवाली आने वाली है तो सेल का वेट कर ले, और उसके बाद उसने किसी और से पूछा तो उसने कहा कि अभी मत ही ले, नेक्स्ट मॉडल आने वाला है तब ले लेना। और इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ, वो अभी भी पुराने फोन की बैटरी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और ये सिचुएशन जब उसने मुझे बताई तो मुझे एक बात समझ आई कि जब एक डिसीजन में बहुत सारे लोग घुस जाते हैं तो वो डिसीजन कम कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है। हाँ, एडवाइस लेना गलत नहीं है, लेकिन हर एडवाइस को अपनी रियलिटी मान लेना शायद थोड़ा गलत है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बोलता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, और आपकी लाइफ उनके एक्सपीरियंस की कॉपी नहीं है। इसीलिए सबकी बात सुनिए, लेकिन फाइनल डिसीजन अपनी सिचुएशन और अपने दिमाग से लीजिए, क्योंकि गलत डिसीजन से भी सीख मिल जाती है, लेकिन दूसरों के डिसीजन पर चलने से सिर्फ रिग्रेट मिलता है। चलिए अब एक प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिए, और गाने के बाद मिलते हैं द पॉपकॉर्न अपडेट में, जहां बात होगी लॉकअप सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले और उस विनर की जिसने सभी प्रिडिक्शंस को सरप्राइज कर दिया। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

बेस्ट ऑफ अंजलि। हाँ जी, साइबर स्कैम के लिए सिर्फ इंसानों से बचने की जरूरत नहीं है। आजकल हम जिस एआई के पीछे भाग रहे हैं ना, ये भी हमारे साथ स्कैम कर सकता है। बेस्ट ऑफ अंजलि। आई नो सुनने में थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जितनी तेजी से हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है ना, उतनी ही तेजी से साइबर क्रिमिनल्स भी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई एआई की हेल्प से बनाई जा रही है फेक वेबसाइट, जिसमें इस्तेमाल किया जा रहा है फिशिंग मैसेजेस, फेक वॉइस कॉल और साथ ही डीप फेक वीडियोस। और जहाँ एआई हमारी जिंदगी आसान कर रहा है ना, वहीं ये स्कैमर्स के खूब काम आ रहा है। और इसलिए सिर्फ मैसेज देखकर या आवाज सुनकर किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा। ओटीपी या बैंकिंग डिटेल्स कभी भी शेयर मत कीजिएगा। अगर कोई कॉल या फिर आपको मैसेज बहुत अर्जेंटली आता है, तो पहले उस इंसान से वेरीफाई जरूर कीजिएगा जहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन करनी है, देन ही ट्रांजेक्शन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्मार्टनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो याद रखिए, एआई स्मार्ट जरूर है, लेकिन आपसे ज्यादा स्मार्ट तभी बनेगा जब आप बिना सोचे ट्रस्ट कर लेंगे। तो डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा पासवर्ड है अवेयरनेस। तो भाई अपना अवेयरनेस वाला पासवर्ड जरूर लगा लीजिएगा, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस सबके साथ ये चीज शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ना कि आपका कोई रिलेटिव, आपका लव्ड वन आपको कॉल कर रहा है, उसे बहुत अर्जेंसी है पैसों की, तो मत दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ दूसरों की हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प जरूर कीजिएगा, यानी कि अवेयर होना जरूरी है और इन चीजों का ख्याल रखिएगा। साथ ही एंजॉय

क्या आपने कभी रियलिटी शो देखा है? और अगर देखा है तो एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है जिस कंटेस्टेंट को आप शुरू से विनर मान रहे थे, विनर उसको छोड़ के कोई और ही विनर निकल जाए तो कैसा लगता है? बस कुछ ऐसा ही हुआ है लॉकअप सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में। ड्रामा भी था, फ्रेंडशिप भी थी, आर्ग्यूमेंट्स भी काफी रहे, ट्विस्ट भी बहुत आए और काफी इमोशनल मोमेंट्स के बाद आखिरकार शो को अपना विनर मिल गया है और इस बार ट्रॉफी अपने नाम की है श्रेया कालरा ने। फिनाले तक का सफर बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा था इनके लिए। कई बार उन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया, कई बार उनके गेम पर सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन शायद वही प्रेशर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। ग्रैंड फिनाले में श्रेया ने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं कैश प्राइज भी अपने नाम कर लिया और कुछ टाइम तक तो अभी यही देखने को मिलेगा। वैसे भी रियलिटी शो का फिनाले हो और सोशल मीडिया पर डिबेट ना हो, कभी ऐसा हुआ है क्या? और एक बात तो माननी पड़ेगी कि आज के रियलिटी शोज सिर्फ टास्क से नहीं, पेशेंस, स्मार्ट डिसीजंस और कंसिस्टेंसी से जीते जाते हैं। चलिए अब एक और जबरदस्त गाना एंजॉय कीजिए और गाने के बाद मिलते हैं स्टाइल स्टूडियो में, जहां बात होगी आज कॉर्पोरेट फैशन की। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगा।

जो कॉर्पोरेट मजदूर हैं, सच सच बताना सुबह तैयार होते वक्त सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में लगता है? नहाने में, ब्रश करने में, उठने में, या फिर ये डिसाइड करने में कि आज क्या पहनकर जाऊं? वार्डरोब खोलते ही लगता है ना कि कपड़े ही नहीं है, ये वाला भी कुछ दिन पहले ही पहना था, आज फिर रिपीट कर दूंगा तो कैसा लगेगा। तो कॉर्पोरेट ड्रेसिंग का ना एक सिंपल सा फंडा है, आपको ना सबसे एक्सपेंसिव नहीं सबसे नीट दिखना होता है। जैसे एक सॉलिड शर्ट हो और ब्लैक या नेवी ट्राउजर, क्लीन शूज, और अगर फ्राइडे या सैटरडे नहीं है तो टी शर्ट से ज्यादा शर्ट ही क्लासी लगती है। और हाँ, एक बात और, कपड़ों से पहले उनकी आयरनिंग नोटिस होती है, तो इसलिए कई बार महंगा आउटफिट भी क्रीज की वजह से एवरेज लगने लगता है, और एक सिंपल शर्ट भी प्रॉपर फिट और आयरनिंग के साथ प्रीमियम फील देती है। इसलिए कॉर्पोरेट लुक का ना असली सीक्रेट ब्रांड्स नहीं, प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ऑफिस में पहला इम्प्रेशन अक्सर आपके इंट्रोडक्शन से पहले आपकी ड्रेसिंग सेंस दे देती है। चलिए अब एक प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिए, और गाने के बाद मिलते हैं फरीदाबाद लोकल बस में। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ वर्ल्ड स्ट्रीट, और बताती हूँ कि वीकेंड हैंगआउट के लिए ये जगह इतनी पॉपुलर क्यों है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: मेरा नाम डॉक्टर आनंद है, आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सर्वोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने वैसे ही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इज मदर्स मिल्क, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग कि माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में, वो पर्याप्त मात्रा में है। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है, और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

कुछ हटके। थारी किस्मत में गुलाम लिखेड़ो है। रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिला करे।

0: माझा किंग, ओ माझे किंग.
1: मी
0: घरी नाही जायचं का? मी तुझी गर्ल, जाने जी गर्ल, मी छम्मा छलो, तू माझा किंग किंग किंग किंग.
2: एक बात बताओ, जब आपका वीकेंड प्लान बनता है कि कहीं चलते हैं, या फिर शाम का ही प्लान बनता है कि कुछ खाकर आते हैं, कहीं घूमकर आते हैं, तो सबसे पहली जगह आपके दिमाग में कौन सी आती है? मेरे दिमाग में तो वर्ल्ड स्ट्रीट ही आता है. इसका रीजन भी है कि यहाँ सिर्फ शॉपिंग नहीं, एक्चुअली इसकी ना वाइब ही अलग है. शाम होते ही लाइट्स ऑन, कहीं लोग कॉफी डेट्स पर हैं, कहीं फैमिलीज डिनर एंजॉय कर रही है, और कहीं दोस्त बस घूमते घूमते रील्स ही बना रहे हैं. वैसे अगर आप फूडी हैं तो वर्ल्ड स्ट्रीट का ना एक अलग ही सीन है. कॉफी कैफेज, पिज्जा, डेजर्ट और स्ट्रीट स्टाइल स्नैक्स, हर मूड के हिसाब से ऑप्शन मिल ही जाते हैं. और मुझे लगता है कि कभी कभी आउटिंग का मतलब ना सिर्फ शॉपिंग ही नहीं होता, बस अपने फेवरेट लोगों के साथ थोड़ी देर वॉक करना और बहुत सारी बातें करके कुछ अच्छा अच्छा खाना भी होता है. तो अगर आपने अभी तक वर्ल्ड स्ट्रीट एक्सप्लोर नहीं करा है तो इस वीकेंड एक छोटा सा प्लान बना लीजिए, हो सकता है आपको अपना नया फेवरेट हैंगआउट स्पॉट वहीं मिल जाए. चलिए अब एक

तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर किसी ट्रेलर ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है तो वो है रामायण। 30 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड बिलीव मी इंटरनेट लिटरली पॉज हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने स्केल के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विजुअल्स की। VFX इतने ग्रैंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं कि काफी लोग बोल रहे हैं फाइनली माइथोलॉजी इज गेटिंग द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। और हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है रणबीर कपूर ने। ट्रेलर आने से पहले बहुत सारे लोगों का एक ही कंसर्न था एनिमल के बाद क्या वो श्रीराम के रोल में एक्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद काफी हद तक वो डाउट खत्म होता दिख रहा है। उनका काम, स्क्रीन प्रेजेंस और सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी। एस सीता बिल्कुल ग्रेसफुल, एलिगेंट और एफर्टलेस लग रही हैं। और अब बात आती है उस एंट्री की जिसका सबको था इंतजार, यश एस रावण। पावरफुल लुक, रॉयल ऑरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड की प्रेजेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। काफी लोग तो कह रहे हैं कि रावण का कैरेक्टर ऑलरेडी घूस पंप्स दे रहा है। और हाँ, एक बात फैंस ने जरूर नोटिस की है, ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्प्स दिखा ही नहीं और बस इसी वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई है। शायद मेकर्स ने वो बिगेस्ट मोमेंट फिल्म के लिए सेव कर रखे हो। ओवरऑल ट्रेलर को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पांस दिया है और बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिवाली 2026 का। मैं हूँ।

0: watch more, log on to www.erosnow.com. Happy Hours.
1: आपसे एक सवाल है, आपने आखिरी बार कब कोई खूबसूरत पल अपनी आंखों से देखा था, ना कि फोन से? क्योंकि आजकल तो कॉफी आती ही या कोई खाना आती ही सबसे पहले स्नैप भेजी जाती है, कहीं घूमने जाओ तो सबसे पहले फोटोज कैप्चर करना ज्यादा जरूरी होता है, ना कि उस मोमेंट को एंजॉय करना। और इसका रिजल्ट पता है क्या होता है? मेमोरीज फोन में ही सेव होकर रह जाती हैं, दिल में जगह ही नहीं बना पाती। कुछ दिन पहले ही ना मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो आप उसके हीरो होंगे या सिर्फ कैमरामैन। और सच कहूँ तो ये लाइन काफी देर तक मेरे दिमाग में घूमती रही, क्योंकि मम्मी के साथ चाय पीना, दोस्तों के साथ अनफिल्टर्ड बातें करके जोर जोर से हंसना, इन सबका असली HD वर्जन सिर्फ यादों में सेव होता है, फोन में नहीं। क्योंकि फोन तो एक टाइम पर आकर बोल ही देगा ना, स्टोरेज फुल हो चुकी है, फिर आपको वो यादें डिलीट करनी पड़ेंगी। लेकिन दिल की गैलरी में अनलिमिटेड स्टोरेज है, वहाँ आप अपनी कोई भी यादें हमेशा बरकरार रख सकते हैं। तो आज का हैप्पी आवर्स चैलेंज बस इतना सा है कि अब से कोई भी खूबसूरत पल मिले तो उसको फोन में ना कैप्चर करके अपने दिल में कैप्चर करना। और आज तो वैसे भी बारिश हो रही है, मौका मिले तो घर पहुंचकर चाय के साथ पकौड़े और बालकनी से बैठकर जब आप बाहर का व्यू देखेंगे तो हो सकता है जिस सुकून को आप पूरे दिन ढूंढ रहे थे वो इन 2 मिनट में मिल जाए। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे द हैप्पी आवर्स सिर्फ 89.6 रेडियो महारानी पर। कल फिर मिलेंगे नए गाने, नए ट्रेंड्स और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक बारिश का मजा लीजिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए और याद रखिए, जिंदगी की सबसे खूबसूरत मेमोरीज कैमरे से नहीं दिल से कैप्चर होती है। टेक केयर, कीप स्माइलिंग और बारिश की तरह अपनी खुशियां भी खुलकर जीते रहिए। बाय बाय।
2: नेवर मिस एन अपडेट, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की किसी भी फाइल को डाउनलोड करने का, खासकर अगर वो आपके बॉस या फिर आपके कलीग की तरफ से आए। अरे अरे, मैं आपको जॉब से निकालने का मंत्रा नहीं बता रही हूँ, बल्कि मंत्रा लेकर आ गई हूँ कि साइबर शील्ड में खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज साइबर क्राइम का ना एक और नया तरीका आ गया मार्केट में। तो नया तरीका ये है मार्केट में, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करने के लिए नया स्कैम कर रहे हैं। और वो स्कैम ये है, वो आपका बॉस, आपका सीनियर या फिर आपके कलीग बन करना आपको व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजते हैं, और जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करते हो या फिर ओपन करते हो ना, और फोन में हो जाता है मैलवेयर इंस्टॉल। और इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, और साथ ही पहुंच जाते हैं आपके बैंक डिटेल्स तक, और फिर क्या होता है, फिर होता है आपका अकाउंट खाली। तो अगर इस तरह के स्कैम से बचना है ना, तो किसी भी फाइल को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर अगर आपका बॉस कोई फाइल भेजता है तो। आज का साइबर मंत्र सिर्फ इतना सा है, अननोन फाइल्स को इग्नोर कीजिए।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ कर दिल में लगा, जो कहती है कर के दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: और झुमका
1: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 69.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

आज जब ऑफिस से घर जाओगे ना तो एक काम जरूर करना, और वो ये कि बेसन का पैकेट मार्केट से उठा के घर जाना, घर में जाके बेसन को एक बर्तन में डालना, थोड़ा सा पानी मिलाना उसमें, हल्का सा पानी बिल्कुल टेस्ट बनाने के लिए, और थोड़े से मसाले वगैरह डाल के फिर आलू डालो उसमें या फिर ब्रेड डालो उसमें और पकौड़े बना दो, और फिर उसके बाद पूरे घर को ज़रूर खिलाना। देखो मम्मी का काम नहीं है ये, ना ही आपकी बीवी का काम है, आपको खुद से सारे काम करने आने चाहिए। जी बिल्कुल, रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का, रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब? मौसम अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सुबह से ऐसा मौसम बना पड़ा है, लाइक मैं जब सुबह उठा तो फिर उसके बाद रिमझिम पूरे दिन भर बरसात होती गई, अच्छा लगा काफ़ी। शाम को आगे बरसात रुकी है, मगर अभी प्रेडिक्शन ये है कि कल भी बारिश ऐसे ही आप लोगों को मिलेगी, तो देखते हैं वक्त बताएगा कि कितनी बारिश मिलती है और कितनी बारिश नहीं मिलती। चलिए खैर, मैं आ चुका हूँ और अगले चार घंटों के लिए, तीन भी नहीं चार घंटों के लिए, पहले तीन घंटों के लिए बातें करते थे हम लोग आपसे, मगर अब पाँच से नौ शाम को बातें करेंगे। तो जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप लोग कहीं पर भी ट्रैफिक में फंसे हैं तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर मेरा सिंपल सा है

0: मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर कॉलिंग। जब शाम को चाहिए एंटिक थे

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

जितने भी 90s किड मुझे सुन रहे हैं ना, शायद आप लोगों को ये बात जरूर याद होगी जो अब मैं कहने वाला हूं। एक ऐसा रेसलर था WWE में जिसने बिग शो को अपने कंधे पर उठाया और फिर उसके बाद उसको जैसे ही स्लैम दिया, नीचे पटका, तो पूरा का पूरा स्टेज टूट गया था। पता है वो कौन सा प्लेयर था? याद करो थोड़ा सा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड मैं जिस रेसलर की बात कर रहा हूं वो है WWE लेजेंड ब्रॉक लेसनर। भाई इस बंदे ने रिटायरमेंट ले ली है प्रोफेशनल रेसलिंग से। मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, बट देखो स्पोर्ट्स है, रिटायरमेंट लेनी बनती है। तो इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करी है, क्यों? क्योंकि एक हार गए थे मैच, हेल इन अ सेल मैच था समर स्लैम में, और ओबा फेमी से ये मैच हारे। अब ये सब मैच देखने के बाद ना मुझे सच में बहुत बुरा लगा, बट ठीक है, वक्त है, सबका आता है और सबका चला जाता है। और फिर मैं तो ये बोलूँगा, देखो इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत अच्छी रेसलिंग दिखाई है, और नॉट ओनली रेसलिंग, लाइक नॉट ओनली WWE, बट इसके अलावा इन्होंने MMA भी खेला है, मिक्स मार्शल आर्ट्स, जहाँ पर असली वाली फाइट होती है। WWE तो फिर भी एक एंटरटेनमेंट के लिए है ना, मगर इन्होंने असली

में भी ये सब करा, और अपनी जवानी के दिनों में ये इंसान एक बहुत ही बेहतरीन रेसलर थे और इन्होंने अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट किया है रेसलिंग में। तो हैट्स ऑफ था इनके पूरे करियर को। और इसी के साथ साथ आप सब भी अपने पुराने दिनों को याद कीजिए। अभी आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। वापस आकर बात करते हैं फरीदाबाद के खाने के बारे में, क्योंकि फरीदाबाद का जो खाना है ना स्ट्रीट फूड, ये यूट्यूब पर वायरल हो रहा है। कैसे करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जन

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: पूरे YouTube पर फरीदाबाद के खाने की चर्चा है, चाहे फिर वो गुड्डू कचौड़ी हो या फिर किसी के कश्यप के छोले कुलचे, या फिर हो रबड़ी फलूदा NIT1 का, या फिर तीन सेक्टर का वो भाजी बर्गर। भाई हर जगह बात चल रही है ने की। रेडियो का गौरव आप सभी के साथ आ चुका है फिर से। खाने की बातें कर रहे हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि YouTube पर एक वीडियो वायरल हो रही है, वो फरीदाबाद की वीडियो है। वो बोलते हैं मैं फरीदाबाद में आया हूँ घूमने के लिए, और सबसे पहले उन्होंने दिन की शुरुआत करी गुड्डू कचौड़ी वाले से। ठीक है, अगर आप लोगों ने गुड्डू कचौड़ी नहीं खाई तो शायद आप बहुत बड़ी चीज़ एक मिस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि खाने का टेस्ट अब चेंज हो चुका है, बट आई डोंट थिंक सो। लाइक मैंने खाया था बचपन में भी, मैंने खाया अभी कुछ टाइम पहले भी, तो मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही लगा। मतलब वो याद आ जाती है एक चीज़ की। फिर उसके बाद वो लोग गए सेक्टर 12 चूर चूर नान खाने के लिए, और सेक्टर 12 में दो चूर चूर नान वाले हैं। पहले बता देता हूँ आपको, एक तो बिल्कुल SRS मॉल के पास में है और एक इंडियन ऑयल के पास में है, तो वहाँ से दोनों में से किसी भी जगह खा सकते हैं आप लोग, दोनों जगह अच्छा ही लगता है। और फिर अगर फरीदाबाद के खाने की और बात करें तो प्रिंस चूर चूर नान भी हर जगह वायरल हो रखा है। अब आते हैं अपने इस साइड, मीन्स सड़क के इस साइड, आते मीन्स NIT की तरफ जब आते हैं तो शाम को रबड़ी जलेबी मिलती है, और बारिश के मौसम में रबड़ी जलेबी का आनंद, क्या मज़ा आ जाता है ना। तो रबड़ी जलेबी भी ट्राई कीजिए आप लोग, उसी के साथ साथ रबड़ी फलूदा NIT1 में रात को लगाते हैं ये भैया कुमार नाम है इनका, या फिर कमल नाम है इनका, मैं आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हाँ इनका रबड़ी फलूदा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ भाजी बर्गर की, तो फिर वो मिलेगा आपको सेक्टर 3 में, पिंटू भाजी बर्गर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पिंटू भाजी बर्गर ही इनका नाम है, और बहुत ही अमेजिंग भाजी बर्गर है। और साथ में पता है क्या मिलता है? नारियल वाली चटनी, बहुत टेस्टी, जैसे मूलचंद बर्गर वाले। भाई ये सारी चीज़ें जब मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे तो मेरे ज़ुबान पर पानी आ गया है। और इसके अलावा अभी घेवर का सीज़न चल रहा है, और घेवर की बात करते हैं तो रघुवर दयाल जी का घेवर भी ओल्ड की मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये सारे खाने की बात मैंने कर दी है, अब इनमें से मैंने कुछ मिस कर दिए होंगे तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9654896896। आप लोगों को पता लग गया होगा अभी तक मेरे मुंह में पानी आ चुका है। तो मैं ज़रा देखता हूँ कुछ खाने को पड़ा है हमारे कैंटीन में या नहीं, हमारी पेंट्री में बेसिकली, देख कर आता हूँ मैं। आप लोगों के लिए गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।
1: सुनी दे,
2: इट इज अ सनी डे।
1: ओ सनी शेर दे यार,
2: यार सॉरी।
1: और फिर मिला है तुलसी?
2: कितने ब्रो, मेरी तुलसी कुमारी को अता पता है ही नहीं यार।

हेलो हेलो एंटरटेनमेंट के पागल लोग, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, जहां हम स्क्रीन के इस पार की दुनिया को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फनी और फुल मसालेदार अंदाज में डिकोड करते हैं। तो भाई, जिस शो ने जेल के अंदर से इतना ड्रामा बाहर भेजा कि घर बैठे लोगों को भी लगा भाई हमारी लाइफ तो काफी पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉकअप की। तो अब लॉकअप पहुंच चुका है अपने ग्रैंड फिनाले के दरवाजे तक, और जैसे जैसे ट्रॉफी करीब आ रही है, कंटेस्टेंट के असली गेम प्लान भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी शो का रूल सिंपल है। शुरुआत में सब बोलते हैं मैं ना यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, और फाइनली आते आते वही दोस्ती बदल जाती है, सॉरी ब्रो, ट्रॉफी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं आती। इस शो में फाइट्स भी मिले, इमोशंस भी मिले, सीक्रेट्स भी मिले, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहाँ ऑडियंस ने रिमोट नहीं बल्कि अपना पेशेंस पकड़ रखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर? किसके फैंस करेंगे सबसे ज्यादा नॉइस? किसका गेम पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग? और कौन निकलेगा असली जेल का बाजीगर? क्योंकि रियलिटी शो में आखिरी वीक में ना भाई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी का मेकओवर होता है। तो अगर आप भी पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल धमाके का, तो बने रहिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। मैं हूँ गीत और चल रहा है सिनेमा का कैप्सूल।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: मेरा नाम डॉक्टर आनंद है। आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सर्वोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने सही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इज मदर्स मिल्क, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग कि माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में, वो पर्याप्त मात्रा में है। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है, और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली।
0: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सारेगामा कारवा, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: गाना चाहे कोई भी चले, मन तो कर रहा है वो वाला गाना गाने का, मौसम है मस्ताना। दिल तो दीवाना नहीं है खैर, बट मौसम सच में अमेजिंग है। सुबह उठा, बारिश शुरू थी, बारिश तो रात भर से शुरू थी, मतलब 3-4 बजे से ये बारिश शुरू हो गई थी, और मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ था आज। ठंडक भी है आसमान में और वो उमस कहीं ना कहीं गायब है। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है, रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे प्रोग्राम HR 896। देखो अगर कहीं पर भी ट्रैफिक में फंसे ना भी इस टाइम, तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप लोग। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो भी लोग फरीदाबाद से इस टाइम जा रहे हैं नोएडा की तरफ, नॉट इस टाइम बट इन दिनों में मैं बात कर रहा हूँ, कांवड़ यात्रा की वजह से आप लोगों को बता दूँ काफ़ी सारी जगहों पर जाम लग रहा है, जैसे कि कालंदी कुंज पे डेली जाम की स्थिति बनी हुई है। तो मैंने वीडियोस देखी 4 तारीख की 5 तारीख की 6 तारीख की, तीनों दिन की वीडियोस है, और तीनों दिन में यही दिखाई दे रहा है कि कोई 10 बजे निकला फरीदाबाद से तो वो 1 बजे नोएडा पहुंचा है, कोई 10 बजे निकला है तो 12:30 बजे नोएडा पहुंचा है। तो ये कालंदी कुंज वाला जाम कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर वाला फ्लाईओवर है ना, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, वो पूरा का पूरा स्ट्रेच चालू होने वाला है, और जितनी जल्दी वो चालू हो जाए उतना ही ज़्यादा बेटर है, और फिर उसके बाद वहाँ से निकल के डायरेक्ट लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, बस यही कहना चाहूंगा। और हाँ, अब फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी ट्रैफिक जाम है, बड़कल पुल पूरा जाम दिखाई दे रहा है मुझे इस टाइम। मुझे कैसे दिखाई दे रहा है बता देता हूँ आप लोगों को, मेरा ऑफिस बड़कल के पास नहीं है बट मैंने अपने फ़ोन में मैप खोल रखा है, बड़कल पुल पूरा जाम है इस टाइम। एंड इसके अलावा ओल्ड अंडरपास का कोई अपडेट अगर मुझे दे सकता है तो प्लीज़ दे दीजिए, ताकि मैं बाकी सारे लिसनर्स को बता दूं कि क्या ओल्ड अंडरपास में पानी जमा है या फिर नहीं, क्या ओल्ड अंडरपास खुला है या फिर नहीं। नंबर है जी हमारा 9654896896। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
1: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक लॉटरी की टिकट है और आपने गलती से उसको कूड़े में फेंक दिया। फिर आपको पता चला कि आप तो लॉटरी जीत चुके हो, बट वो प्राइज लेने के लिए आपके पास वो लॉटरी टिकट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आप तो उसे कूड़े में फेंक चुके हो। अब वो कैसे मिलेगी? ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची में हुआ है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, स्वागत है आप सभी का, आरजे गौरव, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड ये जो मैं मामला बता रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा किस्सा इटली का है, जहाँ पर एक लेडी ने कूड़े में 11 करोड़ की लॉटरी की टिकट फेंक दी बिना सोचे समझे। मगर उसको बाद में पता चला कि वो तो लॉटरी की टिकट जीत चुकी है और फिर कूड़े में फेंक दिया था, तो इनाम जीतने के लिए उसको चाहिए थी वो टिकट। उसने क्या किया, उसने सफाई कर्मियों से बोला कि प्लीज़ आप ढूंढ दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सफाई कर्मी जितने भी होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। मैं बताऊंगा क्यों अच्छे होते हैं, वो बाद में बताएंगे, पहले मुद्दे की बात करते हैं। अब जब सफाई कर्मियों ने बोला मैम उधर 6 टन से ज़्यादा का कचरा पड़ा है, उधर से लॉटरी टिकट आपकी कैसे ढूंढेंगे, तो उसने बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ बोला। तो फिर उसके बाद जो सफाई कर्मचारी थे वो सब अपने काम पे लग गए, उन्होंने ढूंढी टिकट, एंड गेस व्हाट, 6 टन कचरे में से टिकट मिल गई। और फिर उसके बाद वो लेडीज टिकट को लेके पहुंची और अपना प्राइस कलेक्ट कर लिया, 11 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिया। बट उसने वो जो टिकट थी ना लॉटरी की, वो फेंकी क्यों पता है आपको? उसके पास एक मैसेज आ गया था कि आप नहीं जीते हैं, और फिर वो गलती से मैसेज आया था और उसने वो टिकट फेंक दी थी। 11 करोड़ रुपए सोचिए कूड़े में फेंक दिए थे, फिर वो वापस मिल गए। तो मेरे एक दोस्त ने कहा था कि देख भाई गौरव, पैसे किस्मत के होते हैं, अगर आपकी किस्मत में होंगे तो कहीं से भी घूम के आपके पास तक जरूर आ जाएंगे। तो अगर आपसे भी किसी ने पैसे उधार ले रखे हैं तो उसको ये बात जरूर बोल देना कि बेटा मेरे हिस्से के पैसे होंगे ना, घूम के मेरे पास जरूर आ जाएंगे, और वो भी उसी की जेब से निकल कर आएंगे। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी को आप एंजॉय करते रहिए। मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मुंडा आप सभी के साथ, आप सुन रहे प्रोग्राम HR 896।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया।
1: वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का। क्या आपको सपना आया जिसमें आप भगवान से मिले हो सपने के अंदर, या फिर आप किसी मंदिर में गए हो, तो उसका क्या मतलब हो सकता है?
2: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
1: रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। देखो, ऐसा काफी बार होता है कि हम लोग सपने में भगवान को देख लेते हैं, या फिर हो सकता है हम लोग सपने में अपने मून की मूर्ति देखते हैं। तो बेसिकली मतलब ये है कि आपके सारे रुके हुए काम जल्दी से पूरे होने वाले हैं, आपके जो जितना भी स्ट्रेस था ना वो सब का सब खत्म होने वाला है, सुकून मिलने वाला है आपको और सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं इसमें। जैसे कि अगर आपको भगवान की मूर्ति दिखाई दी है तो घर में खुशी आने वाली है और गुड लक का एक प्रतीक है ये। और अगर आपको मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, जैसे काफ़ी बार होता है ना, हम लोग किसी जगह पर जाना चाहते हैं, सपोज आप केदारनाथ जाना चाह रहे हैं और आप नहीं जा पा रहे, आपको सपने में केदारनाथ आप पहुँच चुके हैं, तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो और जल्दी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। और अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, भगवान ने कुछ दिया है सपने में, तो ये तो सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है। इसका मतलब है पैसा और सक्सेस बस आपके दरवाजे पर खड़ी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब लाइफ में होती है ना, तो फिर काफ़ी बार पॉजिटिवनेस आ जाती है ना। तो ऐसे सपने देखा कीजिए। देखो, सपनों पर किसी का कंट्रोल होता नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को अगर पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव सपने ही आएंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हम जो दिन में सोचते हैं वही चीज़ हमारे रात में सपने में भी आती है। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। वापस आकर हम लोग थोड़ा खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेंगे। कौन से खिलाड़ी करते हैं उसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद।
3: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: कुछ हटके।
1: लंबा चुड़ता भी डीजे वाले राजस्थानी तड़के में हरियाणवी गाना

कल मैंने आप सभी को आगे बताया था कि टेस्ट मैच की सीरीज होने वाली है इंडिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका में होने वाला है ये 15 से 19 तारीख तक और 23 से 27 तारीख तक। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि बुमराह नहीं खेलने वाले। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का आरजे गौरव स्वागत करता है। इंजरी हो गई है, एक लेफ्ट नी में उनके इम्पैक्ट आ गया था जब वो फील्डिंग कर रहे थे अभी इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ में, आप सभी को याद होगा। तो इसकी वजह से नी में इशू आ गया है। वैसे आपको बताऊं, मेरे भी घुटने में इशू है थोड़ा सा। मतलब ये पता नहीं क्या है कि ये इशू ना ठीक हो के ही नहीं दे रहा। मैंने फिजियोथेरेपी करवा ली, सब कुछ करवा ली। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि जसप्रीत बुमराह के लेफ्ट नी में इंजरी है, इसकी वजह से वो नहीं खेलेंगे कुछ टाइम तक। और बीसीसीआई ने बोल दिया, देखो अभी उनको थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और फिटनेस टेस्ट होंगे उनके, उसके बाद ही उनको क्लियर किया जाएगा कि ही इज़ फिट फॉर द गेम और नॉट। तो यहाँ पर अभी मेडिकल डिसीजन ये है कि अभी लॉन्ग टर्म तक उनको फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं करना, मतलब फिजिकली कुछ भी हरकतें नहीं करनी है। और अभी उनकी जगह पर किसी और प्लेयर को बुलाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर से एक आकिब नबी हैं, उनको बुलाया गया है। बट अभी देखते हैं कि क्या वो रिप्लेस कर पाएंगे बुमराह को या फिर नहीं। चलिए, अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी एंजॉय करते जाइए। स्पोर्ट्स के बारे में बात हो गई तो फिर उसके बाद बॉलीवुड के बारे में बात ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बॉलीवुड से मैं थोड़ा सा निकल के ना हॉलीवुड की तरफ जाऊंगा, क्योंकि स्पाइडरमैन आ रखी है ना। स्पाइडरमैन देखी है? नहीं देखी अभी तक? नहीं देखी तो फिर आप मेरे जैसे ही हो। मेरा मन बहुत है देखने का बट जा नहीं पा रहा हूँ। ले चलो यार आप लोग। चलिए, अभी फिलहाल गाने को एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर।

0: फिर स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

स्पाइडरमैन BND मीन्स ब्रांड न्यू डे। और अब इसके बाद आने वाली है जल्द ही एक मूवी जैसे कहते हैं डूम्सडे, और डूम्सडे की झलक दिखा दी गई है इस बार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बिल्कुल रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है, आरजे गौरव है आप सभी के साथ, ऐसे बोल सकते ना, यो आरजे गौरव इन द हाउस। खैर अभी ना देखो जितने भी थिएटर्स हैं उसमें एक चीज वायरल है और वो है स्पाइडरमैन मूवी। और स्पाइडरमैन मूवी के दौरान एक आदमी ने इतनी जोर से हवा पास करी कि सब लोगों को स्क्रीनिंग छोड़कर उठ के बाहर आना पड़ा। और ये इंडिया का मामला नहीं है, ये अमेरिका में हुआ है, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सच में हुआ है। एक आदमी अंदर गया और वो कंसिस्टेंटली कर रहा था, कंसिस्टेंटली उसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी, और सडनली पूरे हॉल में इतनी तेज़ गंध फैली कि सब लोग उठ के बाहर चले गए। और मैं तो बस ये बोलना चाहूँगा, जो भी इंसान जा रहा है ना कोई भी मूवी देखने के लिए, भाई सोच समझ के जाना आप लोग, कि और इंसान को परेशान नहीं करना बाकियों को। और अभी फ़िलहाल मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो स्पाइडरमैन इंडिया में लगी है तो इंडिया वाले कुछ ज़्यादा ही चंट हैं। किसी इंसान ने फेसबुक पर लीक कर दी 38 पार्ट्स में, और मैंने 3-4 पार्ट्स देखे, फिर मेरे को लगा यार ये मूवी थिएटर में ही देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोगों के पास भी अगर ये लीक वाला पार्ट आया तो इसको फॉरवर्ड करने के बजाय आप लोग मत ही देखना, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि जो मज़ा फिल्म थिएटर्स में देखने में है वो शायद मोबाइल स्क्रीन में देखने में कभी नहीं आएगा। खैर वो तो अपनी अपनी चॉइस है सबकी, बट स्टिल आप लोग इसको थिएटर में जाके देख कर आइए मेरे एक बार कहने पर, अगर आप लोग मार्वल कॉमिक्स के फैन हैं तो, नहीं है तो फिर रहने दीजिए कोई नहीं। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, गाने और बातें तो चलती रहेंगे, और उसके बाद बात करेंगे ज़रा टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी, प्रोनंसिएशन सही है कि नहीं है बताइएगा ज़रूर। अभी फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: हैलो जी, सत श्री अकाल। तुसीं हुणे साडा गाणा सुन के हटे हो, सुनिया लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्सो तुहानूं गाणा किवें लग्गिया, ते मेरे अगले गाने सुनने लई मिक्सिंग यूट्यूब चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लिओ। थैंक यू सो मच।
1: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का

मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कॉलिंग।

आपको पता है दुनिया में दो चीजें बिल्कुल अजीबो गरीब हुई है। पहली चीज, SpaceX का रॉकेट जाके चांद से टकरा गया। मतलब ये क्या हो रहा है दुनिया में। और पता है क्या, जब चांद से टकराया ना, उसका पूरा का पूरा फुटेज आया है, और फुटेज आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कम से कम नहीं तो 12 मीटर का गड्ढा हुआ है। 12 मीटर शायद मैं कम बोल रहा हूँ, इससे भी ज्यादा बड़ा गड्ढा हुआ और चौड़ाई उसकी बहुत ज्यादा थी। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी, इन दोनों में से किसी एक के बारे में बात करेंगे हम लोग। ये बेसिकली प्रोनंसिएशन इज टेक्नोलॉजी। पहले टेक्नोलॉजी बोलते थे, उस सबको साइड में रख देते हैं। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये जो SpaceX का रॉकेट था Falcon 9, क्यों, मतलब टकरा गया क्या, उस पर कंट्रोल नहीं था या क्या था, पता नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खैर उस चीज़ को अभी साइड में रख देते हैं। अमेरिका ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर बैन लगा दिया है। ह्यूमनॉइड रोबोट बिल्कुल वही होता है जो आप लोग समझ रहे हो, चिट्टी द रोबोट, देखे थे ना एंड्रॉयड ह्यूमनॉइड रोबोट, तो काइंड ऑफ वैसा ही होता है, जिसमें उसके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होता है, नॉलेज होती है बहुत सारी। और बेसिकली उन्होंने बैन इसलिए किया है क्योंकि दूसरी कंट्रीज से आ रहा था अमेरिका में, और अमेरिका में चल रहे हैं ये रोबोट्स नो डाउट। बट अब व्हाइट हाउस ने बोल दिया है कि देखो हम लोग स्ट्रिक्ट हैं और हम लोग ह्यूमनॉइड रोबोट्स अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स है ना, इनके अंदर AI फिटेड ऑलरेडी है, इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनको पता है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और अभी आने वाले टाइम में ना साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि वो लोग जितने भी रोबोट्स हैं उनको वॉर के लिए प्रिपेयर कर दें। क्यों, डिस्ट्रक्शन मोड में क्यों जा रहे हैं? आप लोगों ने मूवी देखी थी ना रोबोट 2.0, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाया था। खैर अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी को एंजॉय कीजिए, आप लोगों के लिए गाना चला रहा हूँ। ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वापस आकर और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त।

सुनो सुनो सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

0: क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। नहीं, सेगमेंट का नाम है क्या हाल है, और इसमें मैं अक्सर पूछता हूँ क्या हाल है आप लोगों के। अगर आप लोगों को भी अपने हाल बताने हैं तो आप लोग हमें बता सकते हैं। नंबर है हमारा 9654896896। बेसिकली ये क्या हाल है जो सेगमेंट है, इसमें यही सब बातें होती है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। और जैसे कि हमने पूछा क्या हाल है, बंदा बोला बढ़िया है। एक्चुअली उसके फ़ोन में बैंक के मिस्ड कॉल्स फैमिली से ज़्यादा थे। मैंने पूछा क्या हाल है, बोला सब मस्त। पीछे से EMI पे कैलेंडर भी हंस रहा था। पूछा क्या हाल है, ऊपर से 4 EMI है, इस पे 2 पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड अलग से कार्डियो करवा रहे हैं इसको, फिर भी कहता है एकदम मस्त। अकाउंट बैलेंस ने साइड में खड़े होकर कहा झूठ बोल रहा है, फिर भी ये कह रहा है सब ठीक है। ये कह रहा लाइफ सेट है, बैंक ने उसका नाम स्पीड डायल पे से रखा है। और हमने पूछा क्या हाल है, बोल रहा है बढ़िया चल रहा है, हर महीने सैलरी सिर्फ EMI देखने आती है, रुकती बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई ना कोई दोस्त होगा जिससे पूछो कि क्या हाल है, बोला टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इतनी टेंशन है कि सिबिल स्कोर भी थेरेपी मांग रहा है, सिबिल स्कोर खत्म पड़ा है। काफ़ी बार ऐसे लोगों से पूछा जाता है कि क्या हाल है, तो बोलता है मौज में है, मगर उसका वॉलेट जैसे ही खोलो ना तो हवा भी उधार मांगती है। और ऐसे लोगों से पूछो क्या हाल है, बोलते सब बढ़िया, लोन वाले उसको सर नहीं रेगुलर कस्टमर बोलते हैं। और लास्ट चीज़ देखो, किसी भी इंसान के ऊपर अगर लोन है, EMI है, उससे पूछो क्या हाल है, बोलता है बस भाई सब बढ़िया है। और उसी वक्त बैंक का मैसेज आता है EMI डिडक्टेड सक्सेसफुली, और फिर वो इंसान मुस्कुरा कर बोलते थे देखा सिस्टम चल रहा है का सिस्टम। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते चाहिए। और अगर आप लोग भी अपना हाल बताना चाहते हैं तो हमें इंस्टा पे आके मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा आईडी है रेडियो महारानी के नाम से, आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। वहीं पर आरजे गौरव भी बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आरजे गौरव इन द हाउस, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: से स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे आल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

मंडे की शाम को मैंने आप सभी के सामने आके बोला था कि हे इंद्रदेव, क्या दिक्कत है आपको फरीदाबाद वालों से, बट मुझे ऐसा लगता है मेरी बात सुन ली गई है। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। मौसम कुछ अच्छा सा है आज, पूरे दिन भर अच्छा रहा। अगर कल क्या होगा, कल वही होगा जो मंजूरे भगवान होगा। चलिए मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ जो अगले चार दिन तक अब गर्मी शुरू होने वाली है, और बता दूँ आपको कि कल भी आपको ऐसी ही बारिश देखने को मिलेगी। एक्चुअली मैं कल 70% चांसेस है बारिश के, और फिर उसके बाद सैटरडे संडे को भी दिखा रहा है 40-50% बारिश के चांसेस, बट 40-50% को मैं बारिश मानता ही नहीं हूँ। आज भी दिखा रहा था बारिश के चांसेस, जो कि दिन तक काफ़ी अच्छी बारिश हुई, और फिर उसके बाद फ्राइडे यानी कि कल जो आ रहा है फ्राइडे, तो उसमें मौसम कैसा रहेगा ये तो मौसम विभाग का यही कहना है कि 7 तारीख तक ठंडक बनी रहेगी, मगर 7 तारीख के बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और वो अगले हफ्ते तक बना रहेगा। और अगला हफ्ता तो वैसे भी 15 अगस्त वाला है, तो पतंगे उड़ाने का सही टाइम है, तो बारिश कुछ दिन के लिए रुक जाएगी तो पतंग भी उड़ा पाएंगे बच्चे, और हम लोग भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, है कि नहीं। हम लोग अच्छे से ऐसे एंजॉय कर पाएंगे कि 15 अगस्त की शाम को अगर बारिश ना हुई तो हम लोग भी पतंग उड़ा लेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार, ये मांझे वगैरह छोड़ दो, नहीं काटनी एक दूसरे की पतंग, नहीं ईगो में नहीं फंसना, क्योंकि इससे चिड़ियों को नुकसान पहुंचता है। मैंने कल ही एक कौवा देखा है जिसका पंख कटा हुआ था, तो जरा उनके बारे में भी सोचा कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि गाने आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक चलते रहेंगे। मैं हूँ रेडियो का गौरव, आरजे गौरव आप सभी के साथ।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ कर दिल में लगा, जो कहती है कर के दिखा। सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: आपको याद है साल 2000 में एक मूवी आई थी, उसका नाम था पुकार, और उसमें एक गाना था के जरा जरा जरा जरा जरा नहीं था, वो सहरा सहरा था। क्या है इसका मतलब बताता हूँ।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी के साथ हाजिर है। एंड एक्चुअली मैं इसका मतलब था जो भी हो सो हो, बेसिकली वॉट एवर विल बी, मतलब जो भी होगा वो होगा ही होगा। और वो के सरा सरा नहीं है, वो क्यू यू ई की, मतलब उसको प्रोनंसिएशन ऐसा के सरा सरा। एक्चुअली मैं इसके म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान और फिर सिंगर शंकर महादेवन एंड कविता कृष्णमूर्ति, जब भी इन दोनों की आवाज़ आती है तो फिर एक कमाल की चीज़ ही निकल कर आती है। तो लिरिक्स आपको क्या लगता है किसने लिखे होंगे? मजरू सुल्तानपुरी ने एंड उनके साथ जावेद अख्तर ने। तो गाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, जैसे स्टार्ट होता है ना, नौजवानो बात मानो कभी किसी से न प्यार करना, याद आया? और इसमें डांस किसने किया था? वन एंड ओनली इंडिया के माइकल जैक्सन कहते हैं उन्हें, मगर मैं बोलूँगा वो वन एंड ओनली प्रभु देवा है। उनके साथ ही माधुरी दीक्षित, गजब का डांस परफॉर्मेंस इस गाने पे हुआ। नौजवानों बात मानो कभी किसी से न प्यार करना, प्यार गलती है प्यार धोखा है प्यार ही, पता नहीं क्या क्या की लाइन है, मज़ेदार गाना है। तो मुझे लगता है मुझे वो गाना ढूंढना पड़ेगा आप लोगों के लिए चलाने के लिए। बट हाँ, ये म्यूज़िक डिकोडिंग का टाइम था तो म्यूज़िक डिकोड हमने किया। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी गाने डिकोड करते रहूं, तो मुझे मैसेज करना मत भूलिएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी को एंजॉय करते रहिए। आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे। और हाँ, आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो वो बता देता हूँ। रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर आकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे कि मैं गाने डिकोड कर दूँ आप लोगों के लिए। या फिर उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर किए गाना।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: पूरे यूट्यूब पर फरीदाबाद के खाने की चर्चा है, चाहे फिर वो गुड्डू कचौड़ी हो या फिर किसी के कश्यप के छोले कुलचे या फिर हो रबड़ी फलूदा NIT 1 का या फिर तीन सेक्टर का वो भाजी बर्गर। भाई हर जगह बात चल रही है नहीं की।
1: रेडियो का गौरव,
0: रेडियो का गौरव आप सभी के साथ आ चुका है फिर से। खाने की बातें कर रहे हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि YouTube पर एक वीडियो वायरल हो रही है, वो फरीदाबाद की वीडियो है। वो बोलते हैं मैं फरीदाबाद में आया हूँ घूमने के लिए, और सबसे पहले उन्होंने दिन की शुरुआत करी गुड्डू कचौड़ी वाले से। ठीक है, अगर आप लोगों ने गुड्डू कचौड़ी नहीं खाई तो शायद आप बहुत बड़ी चीज़ एक मिस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि खाने का टेस्ट अब चेंज हो चुका है, बट आई डोंट थिंक सो। लाइक मैंने खाया था बचपन में भी, मैंने खाया अभी कुछ टाइम पहले भी, तो मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही लगा। मतलब वो याद आ जाती है एक चीज़ की। फिर उसके बाद वो लोग गए सेक्टर 12 चूर चूर नान खाने के लिए, और सेक्टर 12 में दो चूर चूर नान वाले हैं। पहले बता देता हूँ आपको, एक तो बिल्कुल SRS मॉल के पास में है और एक इंडियन ऑयल के पास में है, तो वहाँ से दोनों में से किसी भी जगह खा सकते हैं आप लोग, दोनों जगह अच्छा ही लगता है। और फिर अगर फरीदाबाद के खाने की और बात करें तो प्रिंस चूर चूर नान भी हर जगह वायरल हो रखा है। अब आते हैं अपने इस साइड, मीन्स सड़क के इस साइड, सड़क के इस साइड आते हैं मीन्स NIT की तरफ। जब आते हैं तो शाम को रबड़ी जलेबी मिलती है, और बारिश के मौसम में रबड़ी जलेबी का आनंद, क्या मज़ा आ जाता है ना। तो रबड़ी जलेबी भी ट्राई कीजिए आप लोग, उसी के साथ साथ रबड़ी फलूदा NIT 1 में रात को लगाते हैं ये भैया, कुमार नाम है इनका या फिर कमल नाम है इनका, मैं आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हाँ इनका रबड़ी फलूदा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ भाजी बर्गर की, तो फिर वो मिलेगा आपको सेक्टर 3 में, पिंटू भाजी बर्गर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पिंटू भाजी बर्गर ही इनका नाम है, और बहुत ही अमेजिंग भाजी बर्गर। और साथ में पता है क्या मिलता है? नारियल वाली चटनी, बहुत टेस्टी, जैसे मूलचंद बर्गर वाले। भाई ये सारी चीज़ें जब मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो मेरे ज़ुबान पर पानी आ गया है। और इसके अलावा अभी घेवर का सीज़न चल रहा है, और घेवर की बात करते हैं तो रघुवर दयाल जी का घेवर भी ओल्ड की मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये सारे खाने की बात मैंने कर दी है, अब इनमें से मैंने कुछ मिस कर दिए होंगे तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9654896896। आप लोगों को पता लग गया होगा अभी तक मेरे मुंह में पानी आ चुका है, तो मैं ज़रा देखता हूँ कुछ खाने को पड़ा है हमारे कैंटीन में या नहीं, हमारी पेंट्री में बेसिकली, देख कर आता हूँ मैं। आप लोगों के लिए गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।
2: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
3: रे, थारी किस्मत में गुलाम लिखे हुए है। रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिले।

0: वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का। क्या आपको सपना आया जिसमें आप भगवान से मिले हो सपने के अंदर, या फिर आप किसी मंदिर में गए हो, तो उसका क्या मतलब हो सकता है?
1: रेडियो का गौरव,
0: रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। देखो, ऐसा काफी बार होता है कि हम लोग सपने में भगवान को देख लेते हैं, या फिर हो सकता है हम लोग सपने में अपने मून की मूर्ति देखते हैं। तो बेसिकली मतलब ये है कि आपके सारे रुके हुए काम जल्दी से पूरे होने वाले हैं, आपके जो जितना भी स्ट्रेस था ना, वो सब का सब खत्म होने वाला है, सुकून मिलने वाला है आपको और सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं इसमें। जैसे कि अगर आपको भगवान की मूर्ति दिखाई दी है तो घर में खुशी आने वाली है और गुड लक का एक प्रतीक है ये। और अगर आपको मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, जैसे काफ़ी बार होता है ना, हम लोग किसी जगह पर जाना चाहते हैं, सपोज आप केदारनाथ जाना चाह रहे हैं और आप नहीं जा पा रहे, आपको सपने में केदारनाथ आप पहुंच चुके हैं, तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो और जल्दी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। और अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, भगवान ने कुछ दिया है सपने में, तो ये तो सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है। इसका मतलब है पैसा और सक्सेस बस आपके दरवाजे पर खड़ी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब लाइफ में होती है ना, तो फिर काफ़ी बार पॉजिटिवनेस आ जाती है, है ना। तो ऐसे सपने देखा कीजिए। देखो, सपनों पर किसी का कंट्रोल होता नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को अगर पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव सपने ही आएंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हम जो दिन में सोचते हैं वही चीज़ हमारे रात में सपने में भी आती है। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। वापस आकर हम लोग थोड़ा खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेंगे। कौन से खिलाड़ी करते हैं उसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: कुछ लोग जिम ज्वाइन करते नहीं है मगर उससे पहले ही प्रोटीन पाउडर ले आते हैं, उससे पहले ही क्रिटीन ले आते हैं, उससे पहले ही प्री वर्कआउट ले आते हैं। सबका अपना अपना एक महत्व होता है, मगर पहले जिम तो ज्वाइन करो, पहले कंसिस्टेंसी तो दिखाओ, उसके बाद ये सब कुछ ले आना। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। वक्त हो चुका है जिम ब्रो का और जिम ब्रो आप सभी के साथ बैठा है। अगर आपको लगता है मैं जिम नहीं जाता, मैं जाता हूँ, डेली जाता हूँ जिम, मैं मिस नहीं कर सकता। आई एम सो पंक्चुअल अबाउट जिम, आई एम सो डिसिप्लिन अबाउट जिम। देखिए जिम जाने वालों के लिए मैं एक बस बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग जिम ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो अपने मन से पहली चीज़ ये निकाल दो कि जिम जा रहे हैं तो प्रोटीन की ज़रूरत होगी ही होगी। अगर आपका खाने से ही प्रोटीन आपका इनटेक पूरा हो रहा है देन नो नीड टू बाय प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर इज अ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब पता है ना, जो सप्लीमेंट्री टीचर आती थी हम लोगों के, जब हमारी क्लास टीचर एबसेंट होती थी सप्लीमेंट्री टीचर नहीं आती थी दूसरी, तो उसी तरह से प्रोटीन के सोर्स को सप्लीमेंट करता है सप्लीमेंट पाउडर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले जिम जाइए, कंसिस्टेंसी दिखाइए, डाइट को रेगुलर कीजिए, अपनी डाइट से ऑयल को रिड्यूस कीजिए और प्रोटीन को मतलब बढ़ाइए, और इसी के साथ साथ खाने पीने पे ध्यान दीजिए, वाटर इंटेक पे ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। अब आपको प्रोटीन पाउडर सेलेक्ट कैसे करना है, बहुत सारे टाइप के आते हैं, वे प्रोटीन है, हाइड्रोलाइज्ड है, फिर उसके बाद प्लांट प्रोटीन है। तो सबसे पहले आपको अपने गट हेल्थ के बारे में चेक करवाना है। अगर चेक करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप एक सैंपल लेकर आ सकते हैं प्रोटीन का और उस सैंपल को ट्राई कीजिए और चेक कीजिए कि कहीं आपको ब्लोटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं गैस तो ज़्यादा नहीं बन रही है। तो इन सब चीज़ों को चेक कीजिए, उसके बाद ही आपको प्रोटीन पाउडर खरीदना है। और किसी और के कहने पर कभी भी प्रोटीन पाउडर मत कीजिए, मत खरीदिए, क्योंकि सबका बॉडी टाइप डिफरेंट है। अगर उसके शरीर पर असर अच्छा चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर पर भी अच्छा ही असर होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा चेक कीजिए। और मैं तो ये बोलूँगा, देखो ज़्यादा प्रोटीन इंटेक भी नहीं करना है, बट हाँ जितनी बॉडी की नीड है उतना प्रोटीन तो आप लोगों को चाहिए ही होगा। अब ये कैसे पता करेंगे बॉडी को कितनी नीड है, चैट जीपीटी अपने पास, जेमिनाई अपने पास, उनसे पूछिए एक बार, वो सब कुछ बता देंगे। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी एंजॉय कीजिए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे और उन्हीं में से ये गाना रेडियो महारानी पर।
1: लिखा मेरी।

0: रेडियो महारानी पर एंटरटेनमेंट का डोज अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: तेरी बातों में उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया।
2: Ladies and gentlemen, you are not

क्या आपको मालूम है कि मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े और साथ में सांप, ये सब इस मौसम में बढ़ जाते हैं। सांप तो ऑलरेडी रहते हैं बट इस मौसम में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना उनके बिल में भी पानी घुस जाता है। अब उनके बिल में पानी घुसेगा तो वो तो बाहर ही आएंगे ना। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ कौन? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ उन कीड़ों की जो इस टाइम अभी आसमान में घूम रहे हैं। अगर आपने घरों की लाइट जला रखी है, अगर आप अपनी गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी की लाइट जला रखी है, तो आपको दिख रहे होंगे आसमान में वो छोटे छोटे चिड़ियाँ जिनके पंख निकल आए हैं। और हर साल ये बहुत तंग करते हैं, कभी कभार घर के अंदर भी घुस जाते हैं। और घर के अंदर अगर घुस गए तो सोचो कितना ज़्यादा परेशान होते हैं सब लोग। तो मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा, देखो कीड़े मकोड़े इस टाइम बढ़ गए हैं और इसी के साथ साथ सांप भी इस टाइम निकल रहे हैं। हाँ, नालियों में से कॉकरोच भी बाहर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मच्छर भी बढ़ गए हैं। तो इन सब से बचाव रखिए, अपने घर वालों के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स उठाइए। अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सांप निकलते हैं, तो फिर अपने खिड़की दरवाज़ों को अच्छे से सील टाइट कीजिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका बचाव सबसे ज़्यादा कीजिए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस इन्फॉर्म कर रहा था आप लोगों को, क्योंकि मेरा वक्त हो चुका है यहाँ से जाने का। तो मैं निकलता हूँ, मिलूँगा आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 9। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वापस आएगी गीत वदेश कुबाज यहाँ प्यार भरी बातें लेकर, वो 9 से 12 आप सभी के साथ रहेगी। तो सुनिए रेडियो महारानी 89.6 FM। दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम HR 896।

जो सफर है ये जो खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना, जहां हम सिर्फ शेरो शायरी नहीं सुनते बल्कि हम उन अल्फाजों में छुपी मोहब्बत को महसूस करते हैं, उस दर्द को समझते हैं जिनका इलाज सिर्फ एक आह नहीं है, और उन हंसी को भी संजोते हैं जो किसी खास के नाम शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। तो आज फिर इस महफिल में मैं आपको ले चलूंगी उन शायरों की गलियों में जहां हर मोड़ पर एक एहसास खड़ा है, हर चौराहे पर एक मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है, और हर धड़कन एक शेर बनकर आपकी रूह को छूने के लिए तैयार है। तो आज एक ऐसे ही शायर के बारे में बातें होंगी जिन्होंने इश्क को जिया था। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर वन, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

वैसे अचानक से कोई ये सवाल आपसे पूछ ले, है इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो लीजिए पेश है पहला शेर और शुरुआत होगी आज उस खूबसूरत से शायर से जिन्होंने मोहब्बत को जिया, जिनकी मोहब्बत अधूरी रह गई लेकिन अमर भी हुई, और नाम है इनका साहिर लुधियानवी, जो हमारी हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है। और कहते हैं मोहब्बत का सबसे

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।

केएस चित्रा की आवाज में है ये बहुत ही प्यारा सा गाना और एआर रहमान साहब ने इसको कंपोज किया है। लिरिसिस्ट है महबूब और फिल्म है बॉम्बे। और कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो लगता है कि आज के टाइम में बड़ा ही मुश्किल है यार ऐसे गानों को बनाना, जो उनमें फीलिंग्स होती हैं, जो उनमें वो कनेक्टिविटी होती है कि जो सीधा हमारे दिल तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद को इमेजिन करने लगते हैं उस गाने में। ऐसे गाने बड़े मुश्किल हैं आज के टाइम में बनने। खैर, ऐसे गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और खासा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिल लुधियानवी साहब के बारे में बातें चल रही हैं। बहुत ही सीधी सी बात बोलते हैं लेकिन दिल को आर पार कर देती है ये बातें। और उनकी एक ना खास सी नज्म है जिसका नाम है ताजमहल। वो अगर आपने सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है उसमें। जहां उन्होंने शाहजहां के इश्क को सलाम करने की बजाय उनके इश्क की हकीकत पर सवाल उठाए हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगों से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे बज्मे शाही में गरीबों का गुजर क्या है। चलिए इस बात को आपको बहुत ही सरल सी भाषा में समझाती हूँ। साहिर जहाँ अपनी महबूबा से कहते हैं, ताजमहल तुम्हारे लिए मोहब्बत का एक निशान सही, तुम्हें इस खूबसूरत वादी से मोहब्बत ही सही, लेकिन मेरी महबूबा मुझसे कहीं और मिला करो, क्योंकि ये शाही महफिले गरीबों के लिए नहीं बनी है। जहाँ वो बादशाहत की ताकत के निशान है वहाँ मोहब्बत की मासूम रूहों का जाना अच्छा नहीं होता। तुम्हें इस ताजमहल के पीछे छुपी हकीकत देखनी चाहिए। मतलब यहाँ उन्होंने ताजमहल को जो कनेक्ट किया है अपने इश्क से वो बहुत खूबसूरत सी बात है, जिस बात पर कोई कभी सवाल ही नहीं उठा पाया। खैर, अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें, किसी भी अनजान

0: नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
1: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिर लुधियानवी के बारे में बातें चल रही हैं। साहिर की शायरी सिर्फ इश्क की तारीफ नहीं चाहती, वो मोहब्बत में ईमानदारी चाहते हैं, खामोशी में गहराई चाहते हैं। और वो कहते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये महज एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में मोहब्बत, तन्हाई और एक पूरे रिश्ते की कहानी लिखी गई है। आज के दौर में जब इश्क को दिखावे में जीने का चलन है, वहां साहिर हमें याद दिलाते हैं कि मोहब्बत का असली रंग खामोशी में है, वो जो सिर्फ दिल से महसूस की जाती है और शायद कभी पूरी नहीं होती। खैर, मैं इस बात को नहीं कहूंगी कि मोहब्बत वही असल है जो पूरी ना हो। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आपका सिंपल पासवर्ड स्कैमर्स की इनकम स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो अब से अपने पासवर्ड बनाओ जैसे पकवान, ताकि स्कैमर्स ना पहुंचा सके आपको।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके।
3: आप सुन रहे को इश्क बाजिया में ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ।

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहाँ ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती।

0: पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस

खास सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचें, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थीं जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है, और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख। ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है, लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो है न

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्कबाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्कबाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
4: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
5: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी

के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बन जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं, और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ

आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं इस ट्रैक को।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़े, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

ऐ काश कि हम होश में आने ना पाएं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जानें। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिससे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूँ। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें।

ऐसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। शुरू हो गया है आपका अपना शो इश्क बाजियां और अब वक्त है उस हिस्से का जहां मोहब्बत सिर्फ किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्फाजों से होती है, क्योंकि ये खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना, जहां हर रोज हम मिलते हैं एक ऐसे शायर से जिसने सिर्फ कविता या शायरी नहीं लिखी बल्कि हमारी जिंदगी के उन एहसासों को शब्द दिए हैं जिन्हें हम खुद कभी कह नहीं पाए। तो आज बात होगी उनकी जिनकी लिखी हुई बातें सुनकर अक्सर लगता है कि यार ये तो मेरे दिल की बात है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुलजार साहब के बारे में। गुलजार साहब की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, वो चाय के ठंडे हो जाने में भी मोहब्बत ढूंढ लिया करते हैं, पुरानी किताब में दबे फूल में भी यादें देख लिया करते हैं और खामोशी में पूरी कहानी लिख दिया करते हैं। कभी सोचा है जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? धोखे का, जुदाई का, या फिर उस बात का जो हम कभी कह नहीं पाए? शायद इसीलिए गुलजार साहब के अल्फाज इतने सच्चे लगते हैं क्योंकि वो उन बातों को भी लिखते हैं जो हम महसूस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में हम हर किसी से जुड़े हुए हैं लेकिन किसी के साथ बैठे हुए नहीं हैं। फोन में हजार चैट्स हैं लेकिन दिल की बातें कहीं ड्राफ्ट में पड़ी हुई, और तभी गुलजार साहब याद आते हैं क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि महसूस करने से बनते हैं। तो वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

0: Luxury is not about what you wear, it's about how you carry yourself. Ilahe by Ritu invites you to Jashn, a premium fashion and lifestyle exhibition where elegance meets creativity and style meets sophistication.
1: यहाँ आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिजाइनर एंसेम्बल, स्टेटमेंट ज्वेलरी, लग्जूरियस एक्सेसरीज और हैंड पिक लाइफस्टाइल ब्रांड्स, ऑल क्यूरेटेड फॉर दोज हु अप्रिशिएट द फाइनर थिंग्स इन लाइफ. सो मार्क योर कैलेंडर्स, 6th August, 11 AM टू 8 PM, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद.
0: कम एक्सप्लोर अ वर्ल्ड ऑफ फैशन, एलिगेंस एंड लग्जरी.
1: जश्न इलाही बाय रितु. सी यू देयर.

आप सुन रहे हैं 89.6 FM और मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत। इश्कबाजिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है और चल रही है हमारी महफिल इश्क शायराना की। कुछ लोग कहानियां लिखते हैं और कुछ लोग एहसास। गुलजार साहब उन लोगों में से एक हैं जो खामोशी को भी अल्फाज देते हैं। तो एक उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा शेर लिखा है कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। सोचिए कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़ी सच्चाई छुपी हुई है इसमें। जिंदगी में हर रिश्ता साथ रहने का नाम नहीं होता। कुछ लोग दूर होकर भी हमारी आदतों में बस जाते हैं, हमारी बातों में, हमारी मुस्कुराहट में और कभी कभी हमारी खामोशी में। और शायद इसीलिए गुलजार साहब की शायरी दिल के इतने करीब लगती है। वो हमें ये नहीं सिखाते कि मोहब्बत कैसे करनी है, बल्कि ये बताते हैं कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो उसका असर उम्र भर रहता है। आज के दौर में रिश्ते बहुत जल्दी बनते हैं और उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। लेकिन क्या सच में रिश्ते टूट जाते हैं या सिर्फ बातें बंद हो जाती हैं? क्योंकि यादें तो कभी ब्लॉक नहीं होती ना, वो तो हमेशा ऑनलाइन रहती हैं। तो इसी बात पर गुलजार साहब का एक और मशहूर शेर कि शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। किसी का नाम लिए बिना, किसी से शिकायत किए बिना, बस दो लाइन और पूरा दिल सामने रख दिया। यही तो कमाल है उनकी लिखावट का। कभी गौर कीजिएगा, इश्क हमेशा आई लव यू कहने का नाम तो नहीं है भाई। कभी किसी की पसंद की चाय याद रखने में होता है, कभी बिना कहे उसकी थकान समझ लेने में होता है, और कभी सिर्फ इतना पूछ लेने में कि घर पहुंच गए तुम। शायद मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप फिक्र ही तो है। तो अगर इस वक्त आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसे आपने बहुत दिनों से ये नहीं बताया कि उसकी मौजूदगी आपके लिए कितने मायने रखती है, तो आज कह दीजिए ना, क्योंकि रिश्ते इंतजार से नहीं एहसास से जिंदा रहते हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी की 9.6 FM और ये है इश्क बाजियां। छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, लौटेंगे फिर कुछ और अल्फाज, कुछ और एहसास और ढेर सारी मोहब्बत के साथ। कहीं जाइएगा मत।

0: मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश और बदलते हुए मौसम में सांस के मरीजों के लिए काफ़ी तकलीफें आ सकती है। खास तौर पे ध्यान रखने की बात होती है कि जैसे ही बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ती है, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही में बारिश के मौसम में हम गर्मी से सर्दी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो इस चेंजिंग वेदर में सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। खासतौर पर जिनको एस्थमा या सीओपीडी नाम की बीमारी है, उनकी सडनली वर्सनिंग होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इनहेलर या नेबुलाइजर चलते हैं तो उसको इस मौसम में बिल्कुल भी बंद ना करें। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: कोई पता है ना इस वाले के?
1: किसे नहीं पता,

रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर फिर से स्वागत है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और शो है इश्क बाजियां और हमारा खास सेगमेंट है इश्क शायराना। तो एक सवाल है आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहब्बत खत्म कब होती है तो मैं जवाब देना चाहूंगी या मैं पूछना ही चाहूंगी जब रिश्ता टूट जाए या जब लोग दूर हो जाएं या फिर जब याद आना बंद हो जाए। शायद मोहब्बत का ना कोई दी एंड नहीं होता है, इसलिए तो गुलजार साहब लिखते हैं, हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर ही अपना इंतजार किया है। जरा सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम किसी और का इंतजार करते करते खुद से दूर हो गए हों। हम किसी की एक कॉल, एक मैसेज, एक मुलाकात के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी को रोक कर बैठ गए। लेकिन शायद मोहब्बत का मतलब किसी का इंतजार करना नहीं बल्कि इंतजार करते हुए भी खुद को खोने ना देने में होता है। गुलजार साहब की लिखावट की सबसे खूबसूरत बात यही है, वो अपने दर्द में भी उम्मीद दे देते हैं और कभी नहीं कहते कि रोइए मत, वो कहते हैं रो लीजिए लेकिन फिर भी मुस्कुराइए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ तुम्हारे गुजरे हुए लम्हों का नाम नहीं है, आने वाले कल का भी नाम है। मुझे हमेशा लगता है यादें बहुत अजीब हैं, ना इन्हें बुलाया जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। कभी किसी बारिश की खुशबू, कभी कोई पुराना गाना, कभी चाय की पहली चुस्की और अचानक कोई बहुत अपना याद आ जाता है। शायद इसीलिए गुलजार साहब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे वो हमारी ही कहानी लिख रहे हों। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी याद है जो आज भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है तो उसे मिटाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कुछ यादें जख्म नहीं होती, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती हैं। तो वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

वेलकम बैक गाइज, यू आर लिसनिंग टू फेवरेट सेगमेंट सिनेमा कैप्सूल। मैं हूँ आरजे गीत और यहाँ मैं रिव्यूज नहीं देती बल्कि बताती हूँ कि वीकेंड का डेटा पैक इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मुसाफिर कैफे की, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है इन दिनों। अब ऑनेस्टली ओटीटी पर इतना अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है।

बस स्क्रीन पर आ जाता है और बाकी के इमोशंस ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। इसको ओवर एक्टिंग का पासवर्ड शायद आज तक मिला ही नहीं। और अच्छी बात यह है कि ये सीरीज अननेसेसरीली लाउड बनने की कोशिश नहीं करती, ना फोर्स्ड एक्शन, ना रैंडम ट्विस्ट, ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन में चलता रहता है, बल्कि एवरीथिंग फील सिंपल ऑर्गेनिक। वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी काफी नेचुरल लग रही है। तीनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर बिल्कुल एफर्टलेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्लो कन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं, जो कॉफी पे दो घंटे बैठ सकते हैं और जिन्हें हर 10 मिनट में एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हर एपिसोड के बाद बोलते हो, बस ट्विस्ट कहाँ है यार, तो मे बी दिस वंस नॉट योर कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर मूड है समथिंग काम, फील गुड और जेन्युइनली वेल परफॉर्म देखने का, देन मुसाफिर कैफे डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। मैं हूँ गीत और मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमा कैप्सूल में, क्योंकि OTT पर कंटेंट खत्म हो सकता है लेकिन भाई मेरी बातचीत खत्म नहीं होगी। तो वक्त है गाने का, गाना सुनकर आते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हट के शो है इश्क बाजियां. हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब के बारे में. तो आज की महफिल हमने नाम की गुलजार साहब की, जिन्होंने हमें सिखाया कि शायरी सिर्फ तुकबंदी नहीं होती, शायरी वो होती है जो बिना किसी अजनबी के दिल में जाकर भी अपना घर बना ले. गुलजार साहब की सबसे बड़ी खूबी यही है, वो जिंदगी को बहुत ध्यान से देखते हैं. बारिश हो, खिड़की पर बैठी धूप हो,

0: आप एक बात अपने साथ लेकर जाएं तो बस इतनी सी, अपनों को वक्त दीजिए, अपने इमोशंस को दबाइए मत, और जिंदगी में कुछ पन्ने ऐसे भी रखिए जहां सिर्फ अल्फाज नहीं एहसास लिखे जाएं। तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेगमेंट है इश्क शायराना वो यहीं समाप्त होता है। तो जाते जाते गुलजार साहब की एक और लाइन, कभी तो चौंक के देखे कोई हमारी तरफ, किसी की आंख में हमको भी इंतजार दिखे। क्या खूबसूरत ख्वाहिश है देखे जाने की, समझे जाने की, और शायद यही तो हर दिल की सबसे सच्ची चाहत है। मैं हूँ आपकी अपनी इश्क वाली गीत, आप सुन रहे थे इश्क बाजिया का खास सेगमेंट इश्क शायराना। तो हम इश्क शायराना में हम फिर से मिलेंगे एक नए शायर, नई सोच और कुछ ऐसे अल्फाजों के साथ जो शायद आपके दिल की आवाज बन जाए। तब तक मोहब्बत बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं और कुछ लोग अल्फाजों में हमेशा के लिए रह जाते हैं। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इश्क बाजिया अभी भी जारी है। तो इंतजार कीजिए अगले सेगमेंट का, रेट्रो इश्क, मैं जल्दी ही आपसे मिलने वाली हूँ।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क, एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट का दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फांस चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

एक बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, जहां मैं बात करती हूं उन कहानियों की जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहां मैं बात कर रही हूं प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहां दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा। क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहां शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह हो ना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। आगे जानेंगे कि क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुँच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

हेलो हेलो एंटरटेनमेंट के पागल लोग, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, जहां हम स्क्रीन के इस पार की दुनिया को थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा फनी और फुल मसालेदार अंदाज में डिकोड करते हैं। तो भाई, जिस शो ने जेल के अंदर से इतना ड्रामा बाहर भेजा कि घर बैठे लोगों को भी लगा भाई हमारी लाइफ तो काफी पीसफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉकअप की। तो अब लॉकअप पहुंच चुका है अपने ग्रैंड फिनाले के दरवाजे तक, और जैसे जैसे ट्रॉफी करीब आ रही है, कंटेस्टेंट के असली गेम प्लान भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी शो का रूल सिंपल है। शुरुआत में सब बोलते हैं मैं ना यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, और फाइनली आते आते वही दोस्ती बदल जाती है, सॉरी ब्रो, ट्रॉफी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं आती। इस शो में फाइट्स भी मिले, इमोशंस भी मिले, सीक्रेट्स भी मिले, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहाँ ऑडियंस ने रिमोट नहीं बल्कि अपना पेशेंस पकड़ रखा था। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन बनेगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर? किसके फैंस करेंगे सबसे ज्यादा नॉइस? किसका गेम पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग? और कौन निकलेगा असली जेल का बाजीगर? क्योंकि रियलिटी शो में आखिरी वीक में ना भाई कंटेस्टेंट नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी का मेकओवर होता है। तो अगर आप भी पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल धमाके का, तो बने रहिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। मैं हूँ गीत और चल रहा है सिनेमा का कैप्सूल।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। तो आखिरकार कई महीनों के सफर के बाद न जाने कितने शहरों, कितनी सरहदों और कितनी मुश्किलों को पार करके प्रद्युमन कुमार स्वीडन पहुंच ही गए। सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए वो हर रोज साइकिल चलाते थे, जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं आंखों से शुरू होती हैं, और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लफ्ज कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चालक की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। मिलूंगी फिर एक और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यार को वक्त दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, और याद रखिए, सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

प्यार बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है लेकिन इसने बहुत

ही होती हैं। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना। बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बात बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

नाम डॉक्टर आनंद है, आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सर्वोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने सही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इस मदर्स मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग कि माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में वो पर्याप्त मात्रा में हैं। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है, और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली। डॉक्टर कॉलिंग।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद बढ़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

सो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर किसी ट्रेलर ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा बज क्रिएट किया है तो वो है रामायण। 30 जुलाई को इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड बिलीव मी इंटरनेट लिटरली पॉज हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने स्केल के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं विजुअल्स की। VFX इतने ग्रैंड और पॉलिश्ड लग रहे हैं कि काफी लोग बोल रहे हैं फाइनली माइथोलॉजी इज गेटिंग द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट इट डिजर्व्स। और हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है रणबीर कपूर ने। ट्रेलर आने से पहले बहुत सारे लोगों का एक ही कंसर्न था, एनिमल के बाद क्या वो श्रीराम के रोल में एक्सेप्ट हो पाएंगे, लेकिन ट्रेलर के बाद काफी हद तक वो डाउट खत्म होता दिख रहा है। उनका काम, स्क्रीन प्रेजेंस और सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं साई पल्लवी। एस सीता बिल्कुल ग्रेसफुल, एलिगेंट और एफर्टलेस लग रही हैं। और अब बात आती है उस एंट्री की जिसका सबको था इंतजार, यश एस रावण। पावरफुल लुक, रॉयल ऑरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड की प्रेजेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है। काफी लोग तो कह रहे हैं कि रावण का कैरेक्टर ऑलरेडी घूस पंप्स दे रहा है। और हाँ, एक बात फैंस ने जरूर नोटिस की है, ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्प्स दिखा ही नहीं और बस इसी वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई है। शायद मेकर्स ने वो बिगेस्ट मोमेंट फिल्म के लिए सेव कर रखे हो। ओवरऑल ट्रेलर को ऑडियंस ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है और बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिवाली 2026 का। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेट कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है, और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपके इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्ते कार्ड में एक और कर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब रखा।

अगर आप भी उन्हीं लोगों में से है ना जो सिर्फ बैठकर सोचते हैं कि कुछ तो करना है जिंदगी में, एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि भाई कैसे कमाएं, तो आज का सेगमेंट खास आपके लिए है। तो वेलकम टू रेडियो महारानी, आज अंजलि इन द हाउस, और अब मैं लेकर आ गई हूँ बिजनेस बूस्ट। और ये जो हमारा सेगमेंट है ना, ये आपके लिए बहुत कमाल का होने वाला है, बिकॉज यहाँ ना मैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज देती हूँ जो आप घर बैठे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के आइडिया की। तो आज का जो आइडिया है वो है प्लांट नर्सरी और इंडोर प्लांट्स बिजनेस। आपको पता है मैं ये आइडिया क्यों लेकर आया, क्योंकि आजकल अगर आप किसी के घर में जाते हो, किसी के भी ऑफिस में जाते हो ना, तो आप इस तरह के इंडोर प्लांट्स जरूर देखते हो, जिन्हें देखकर ना आपका मन कर जाता है कि काश मैंने अपने घर में भी लगाए होते, क्योंकि ये सारे प्लांट्स एक वाइब लेकर आते हैं। फिर चाहे बात करूँ स्नेक प्लांट की, मनी प्लांट की, एरिका पाम, बहुत सारे प्लांट्स हमें मिल जाते हैं जो हम इंडोर लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका है बिजनेस करने का, छोटे लेवल पर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ की अपनी लोकल सोसाइटी को कनेक्ट करके आप कस्टमर्स बना सकते हैं। तो याद जरूर रखिए, बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा लाखों रुपए नहीं बल्कि एक अच्छा आइडिया और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो छोटी शुरुआत ही कल का बड़ा ब्रांड बन सकता है, और जब आपका ये बिजनेस बड़ा ब्रांड बन जाए ना, तो मुझे जरूर याद रखिएगा, और साथ ही ये जरूर बताइएगा कि आपको आज का बिजनेस बूस्ट आइडिया कैसा लगा। और बताने के लिए बताए ना आपको कहाँ जाना है, बताने के लिए फटाफट से जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर वॉइस मैसेज भेजिए और बस एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

वॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: जाना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: सीधा सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

आशिक मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुराया मारे कील को मुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े
1: मुराया मारे कील को मुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: मुश्किल

0: बोल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है, व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
2: नारद जी आए हैं, देवी लक्ष्मी आई है, बाबा भोलेनाथ भी आए हैं। बाबा भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन अब इनको वहां जगह कौन देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया। बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहां जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना, तो भले बात नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो? अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा? नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है, वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो, जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है, ब्याह में देवताओं ने खूब कहा, महाराज थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए। जैसे कैसे कर लेंगे, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटका है। बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते, हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के